0: for your entertainment this morning. Shami Misak, late Shami Misak, a regular contributor to my programs with his shairis, incidents, and short stories. To yeh hai Mahroom Shamim Ishaq.
1: Waqt. Waqt aaj taravi se aage badhta raha. Lamhe minton mein aur dinon mein badal gaye. Bahar ki mehak se mahmoor aakhir suraj ne 25 sitambar subah mein jab duniya ko jagaya to kaun janta tha ki aaj ka din meri zindagi ka sabse pyara sabse khoobsurat din hoga. रह रहकर बादल गहरे होते थे और गर्मी की तपती जमीन को आबियार कर जाते थे. मिट्टी की सौंधी खुशबू चारों तरफ बिखर सी गई थी. तुम पाई बाग में खामोश नरजिस के साथ बैठी थी. करीब ही फव्वारा हल्की हल्की बूंदें हवा में उछाल रहा था. मैं उस शाम टेनिस खेलकर तुमको नरजिस के पास बैठा देखकर तुम्हारी तरफ बढ़ाया. तुमने झुकी झुकी नजरों से मेरी तरफ देखा. मैंने धीरे से रैकेट को तुम्हारे सर पर छुआया. कैसी हो नाहू? तुमने धीमी सी मुस्कुराहट से सर हिलाया जैसे कह रही हो ठीक हूं. मैं ना जाने क्यों बस दम बहुत सा तुम्हारी तरफ देखता रहा. शायद वक्त के लम्हे बढ़ जाते मगर नजीस की आवाज ने चौंका दिया. भाईजान आपके लिए ऑरेंज स्क्वाश लाऊं? और मैं जैसे ख्वाब से चौंक पड़ा. हाँ हाँ नरजिस जरा आइस क्यूब डालकर लाना. नरजिस घर के अंदर चली गई. मैं तुम्हारे और करीब आ गया. तुम्हारी आंखें झुकी हुई थी. शायद तुम शर्मा भी रही थी. हवा का झोंका आया. तुमने कुछ सटपटा कर खड़ा होना शुरू कर दिया और बस उसी लम्हे तुम्हारे गहरे याकूती होंठ अनजाने में पल भर के लिए मेरे होठों से मिस हो गए. मैं इस खूबसूरत इत्तफाक के लिए तैयार न था. तुम तेजी से नजरें झुकाए नरजिस के पीछे कमरे की तरफ चली गई. वक्त गुजर गया लम्हा दूर हो गया मगर वो सितंबर की शाम मुझको अभी भी नहीं भूलती. तुम्हारी शर्माहट घबराहट नहीं भूलती. क्या वो लम्हे कभी वापस ना आएंगे या सिर्फ हम उनकी यादों में गुम जिंदगी की रह कुदर पर यूं ही भटक. भुलाओगे बहुत लेकिन तुम्हें हम याद आएंगे. बहुत याद आएंगे फिर भी बहुत कम याद आएंगे. और भुला बैठे हो हमको आज लेकिन ये समझ लेना. भुला बैठे हो हमको आज लेकिन ये समझ लेना बहुत पछताओगे जिस वक्त कल हम याद आएंगे.

सितंबर का महीना मौसम बहार की आमद, फूलों की महक और रंगत। क्यों बढ़ जाते हैं एहसास तन्हाई के, क्यों ले आती है चुपके से यादों के पल, मेरी तुम्हारी यादें। कुछ मौजे हवा पेचा ऐ मीर नजर आई, कुछ मौजे हवा पेचा ऐ मीर नजर आई, शायद के बहार आई जंजीर नजर आई। ये है यादों का सफर।

मैं अपने शौक की धुन में दुआ भी भूल गया, मैं अपने शौक की धुन में दुआ भी भूल गया, और वो पास आए तो नामे खुदा भी भूल गया। अब उससे बढ़ के क्या और बेकसी होगी, अब उससे बढ़ के क्या और बेकसी होगी, इलाही अब तो मेरा दिल दुआ भी भूल गया।

0: यादें सजा है,
1: यादें गुनाह है,
0: यादें मुस्कुराहट है,
1: यादें ख्वाब है।
0: यादों के सहारे ही व्यक्ति आज से कल में कदम रखता है और पीछे मुड़कर बीते कल को निहारता है।

0: And don't forget, if you have a short story that you have written, and if you want songs to be punctuated in it or filled in it for you, or if you have a short incident in your life, you just want to relate it and have a song attached to it, remember my telephone number, 0431-919-964. I used to get a lot of those contributions a few years back, and I used to put them on the radio with the editing together with old songs. Yes, Sangeet Kichankar, and I'm playing you some selected old recordings of mine because I'm unable to be live here from my studios in Mansfield, Brisbane this morning.
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं
2: तो उमसॉग से बात कर इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं
2: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा
2: बिल्कुल खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है भारत में नंबर +918-448-381-360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801 प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई
3: ओमसॉग केयरिंग विद डिग्निटी

0: ब्रिस्बेन की पहली पसंद 79.1 ब्रिस्बेनी AM।
1: आपने बना लिया है गहरा संबंध, सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सेवा, इसी स्टेशन के सहारे हम करते हैं आपके साथ फिजी समाचार, भेंट वार्ता, स्थानीय समाचार, सामाजिक सूचनाएं। सुनते रहिए संगीत की झनकार।

आरंभ में रफी भी मुकेश की तरह केएल सैगल से प्रभावित थे। उनके शुरू के गीत सैगल की ही आवाज के लगती थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी शैली अलग विकसित की, जिसमें वह पर्दे पर गाने वाले कलाकार की आवाज के अनुसार गाते थे। अलग अलग नायकों के लिए गाए उनके ये दर्द भरी गीत आज भी हमारे कानों में

संगीतकार नौशाद के अनुसार रफी की आवाज में गजब की रेंज थी। जहां उन्होंने फिल्म बैजीबारा में कुछ गीत और अन्य दर्द भरे गीत ऊंचे स्वर में गाए, वहां उतनी ही खूबसूरती से और दबे सुरों में रोमांटिक गीत भी गाए। फिर नायक चाहे देवानंद हो, जॉय मुखर्जी या राजकुमार, रफी साहब ने अपनी बहुयामी आवाज देकर उन्हें और भी लोकप्रिय बना दिया।

मोहम्मद रफी हिंदी फिल्मों के लिए उपयुक्त और पूर्ण गायक सिद्ध हुए। विभिन्न भावनाओं पर आधारित हिंदी फिल्म में गायक को हर तरह के भाव को अपने गीतों द्वारा अडप्ट करना पड़ता है। दर्द, रोमांस के साथ साथ मस्ती, शरारत और छेड़छाड़ वाले गीत भी गाने पड़ते हैं। ऐसी नटखट चुलबुले गीत गाकर रफी साहब ने एक नया ट्रेंड शुरू किया। शमी कपूर तो अपनी जमी इमेज और सफलता का बहुत हद तक श्रेय रफी साहब को ही देते हैं।

सालों के सरगमी सफर में मोहम्मद रफी ने लगभग 20,000 गीत गाए। गीतों की संख्या का विवाद हो सकता है, मगर उनकी श्रेष्ठता निर्विवाद है। 1950 से 1970 तक के दो दशक हिंदी फिल्म संगीत तथा रफी जी के लिए स्वर्णकाल थी। इस दौरान रफी जी ने एक से एक अच्छे गीत गाए और बदले में उन्हें पुरस्कार और शोहरत भी खूब मिली। जिस आवाज ने करोड़ों लोगों को हंसाया और रुलाया, वो आवाज सन 19 में हमेशा के लिए शांत हो गई। लेकिन आज भी शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता हो जब रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से हम रवि जी की आवाज ना सुनते।

कभी खुशबू तो कभी आंसू तो फिर कभी नगमा, लेकिन सब के सब यह है मेरी पसंद। चुने हुए लोकप्रिय संगीत पुरानी फिल्मों से निकाली हुई। न चांदनी है न गर्मी की वो खौनक रातें, न चांदनी है न गर्मी की वो खौनक रातें, तुम्हारी याद फिर इस दर्जा क्यों सताती है।

किस कदर कामयाब होते हैं आप अपना जवाब होते हैं, किस कदर कामयाब होते हैं आप अपना जवाब होते हैं।

कर अंदर से बिखरे और फिर जलथल हुए, हम बिछड़ कर तुझसे इतना रोए कि बादल हुए। थे कभी आबाद जो जख्मों के फूलों से यहां, थे कभी आबाद जो जख्मों के फूलों से यहां, देखना वो शहर इस मौसम में

रिश्ता ए दर्द का एहसास दिलाता है मुझे, रिश्ता ए दर्द का एहसास दिलाता है मुझे, याद आता है तो पहरू वो रुलाता है मुझे। ये भी सच है कि है मिट्टी से मोहब्बत मुझको, और कहीं दूर से दरिया भी बुलाता है मुझे।

लेकिन आपने हमारा साथ दिया ना, तो आपका स्वागत करते हैं माला से, यानी कि गीत माला से। प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं गीत माला से, एब्सोल्युटली लेटेस्ट रिलीजेस से निकाले हुए संगीत, हिट्स ऑफ 90s और रिसेंट पास हिट्स से। ऐसे गीत जिसको एक बार सुनकर बार बार सुनने को जी चाहता है। आपको याद होगा नदीम शर्मन संगीतकार, गीतकार समीर और फिल्म एक रिश्ता, कुमार सानू के साथ अलका याग्निक।

वाटर टीम, संगीतकार नदीम शमर, गीतकार समीर, आवाज अलका याग्निक के साथ कुमार सानू, एब्सोल्युटली मैजिक। फिल्म एक रिश्ता अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की फिल्म, संगीतकार नदीम शमर, गीतकार समीर। और अब चलो गीत माले में शामिल करते हैं आपके लिए फिल्म कसूर। गीत माला में ऐसे गीत जिसको एक बार सुनकर बार बार सुनने को जी चाहता है, ऐसे गीत जो हिट परेड में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। आपका साथ फिरोज खान, संगीत की जानकार 7।

0: यह है 1701 संगीत की झंकार, और संगीत की झंकार पर आप सुन रहे हैं हिट्स ऑफ 90s और रिसेंट पास्ट हिट, ऐसे गीत जो हिट ब्रेक में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। ऐसे ही गीत से हम अपने कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं, रिसेंट पास्ट हिट्स और हिट्स ऑफ 90s, ऐसे गीत जिसको एक बार सुनकर बार बार सुनने को जी चाहता है।
1: आपको याद रहे 7 से लेकर 8 बजे तक आपके लिए हम पेश करेंगे शेर नगमा, गीत संगीत शायरी और गजलों का एक हसीन संगम, और 6 से लेकर 7 बजे तक यादों का सफर, चुने हुए लोकप्रिय संगीत पुरानी फिल्मों से निकाली हुई गीत माला को आगे बढ़ाते हुए आपको लिए हम पेश करते हैं एक बार फिर कुमार सानू की आवाज। यह है संगीत की जानकार 1701 ब्रिस्बेन पर आपका साथ फिरोज का।

रेडियो वो हो जिसमें महबूब का दम हो, रेडियो वो जिसमें महबूबा की सांसें हो, रेडियो वो जिसमें समाज सेवा हो।

रेडियो वो हो जिसमें महबूब का दम हो, रेडियो वो जिसमें महबूबा की सांसें हो, रेडियो वो जिसमें समाज सेवा हो।

संगीत की झनकार, जिसके अंतर्गत आप सुन रहे हैं चुने हुए लोकप्रिय संगीत हिट्स ऑफ 90s और रिसेंट पास हिट से निकाली हुई ऐसे गीत जिसको एक बार छोड़कर बार बार सुनने को जी चाहता है। ऐसे ही गीतों से अपने कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। गीत माला को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर शामिल करते हैं फिल्म कसूर से निकाली हुई एक बहुत ही खूबसूरत नगमा।

रेडियो संगीत की जानकार, मनोरंजन, संस्कृति और समाचार। यह है संगीत की जानकार और आप सुन रहे हैं रिसेंट पास्ट हिट्स।

1999 की फिल्म सिर्फ सिम से निकाली हुई आवाज शान। हमारा विशेष प्रोग्राम संगीत की जानकार 79 ब्रिस्बेन पर आपके साथ फिरोज खान, और यह है फिल्म दिल है कि मानता नहीं।

0: हिट्स और 90s और रिसेंट पास हिट के अंतर्गत भी आप सुन रहे थे दिल है की मानतने की टाइटल सॉन्ग।
1: दिलों को झंकृत करे,
2: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत से रंग बिखेरे,
0: ये है संगीत की जानकारी।

आपको याद रहे 6 से लेकर 7 बजे तक आपके लिए हम पेश करेंगे चुने हुए लोकप्रिय संगीत पुरानी फिल्मों से निकाली हुई। फिलहाल हिट्स ऑफ 90s और रिसेंट पास्ट को जारी रखते हुए आपको सुनाते हैं फिल्म सड़क। गीतमाला में ऐसे गीत जिसको एक बार सुनकर बार बार सुनने को जी जाता है, ऐसे ही गीतों से अपने कार्यक्रम का

है 1701 संगीत की झंकार, और संगीत की झंकार पर आप सुन रहे हैं हिट्स ऑफ 90s और रिसेंट पास हिट, ऐसे गीत जो हिट परेड में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। ऐसे ही गीत से हम अपने कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं, रिसेंट पास हिट्स और हिट्स ऑफ 90s, ऐसे गीत जिसको एक बार सुनकर बार बार सुनने को जी चाहता है।

आजकल बहुत कम सुनने को मिलता है। अनमिस्टेकेबल साउंड ऑफ जसपिंदर नरूला, फिल्म दीवाने, अजय देवगन के फिल्म दीवाने, संजीव दर्शन संगीत का

0: ब्रिस्बेन की पहली पसंद 79.1 ब्रिस्बेन AM।
1: हिट्स ऑफ 90s और रीसेंट पासेज की आखिरी नगमे आपके लिए पेश कर रहे हैं वही फिल्म आंखें की झरोखों से।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: रेडियो 79.1, जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701।

0: good afternoon and welcome back to Radio Brisbane. नमस्कार, एक बार फिर रोहित सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहेगा आज का कार्यक्रम में। नमस्कार, किमचो सास्तिकाल, सलाम अलैकुम, राम राम और बुला कहते हुए एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है रेडियो ब्रिजवाणी पर। मैं हूँ रोहित सिंह, ठीक अभी से लेकर 2:30 बजे तक आपका हमारा साथ रहेगा रेडियो ब्रिजवाणी पर शाम का सफर में। आपने अपना रेडियो अभी खोला, आप सभी का हार्दिक स्वागत हम करना चाहेंगे रेडियो ब्रिजवाणी पर। 2 घंटे के लिए खूबसूरत सा साथ रहेगा मिले जुले संगीत में।
1: हर बात का वक्त मुकर्रर है, हर काम के साथ होती है
0: हमेशा की तरह। फोन नंबर
1: 3279-1701।
0: जहाँ जो साथियों जुड़े रहेगा हमारे साथ 2:30 बजे तक शाम का सफर में। और हमेशा की तरह फोन नंबर 3279-1701 पर ये कार्यक्रम आज के लिए हम अपने स्टूडियो से लाइव पेश कर रहे हैं। रोहित सिंह के साथ दीजिएगा, ठीक अभी से लेकर 2:30 बजे तक देश विदेश में आप है, इंटर स्टेट में आप है, ब्रिस्बेन में आप है, हमारी आवाज आप तक पहुंच रहा है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है रेडियो ब्रिस्बेन पर। दो घंटे के लिए साथ दीजिएगा शाम का सफर में खूबसूरत सा मिले जुले संगीत का कार्यक्रम। आपके लिए हम लेकर उपस्थित हुए अपने स्टूडियोज में, याद कीजिएगा रोहित सिंह के साथ है रेडियो ब्रिस्बेन।

दोस्तों साथी, अगर आपने अपना रेडियो भी खोला, आप सभी का हार्दिक स्वागत हम करना चाहेंगे रेडियो बिजवानी पर। याद कीजिएगा, आपका हमारा साथ है ठीक अभी से लेकर रेडियो बिजवानी पर ढाई बजे तक जरूर से साथ दीजिएगा। और हमेशा की तरह फोन नंबर 3279-1701। स्थानीय कलाकार और हम आज के स्थानीय कलाकार है स्वर्गीय दयानंद। खूबसूरत से आवाज में खूबसूरत गीत आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ स्थानीय कलाकार में दयानंद के गीत आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। याद कीजिएगा रोहित सिंह के साथ है रेडियो बिजवानी पर स्थानीय कलाकार।

स्वर के दयानंद की आवाज में बहुत ही खूबसूरत संगीत आप सभी रेडियो मेजबानी पर सुन रहे थे। चलते हैं एक और एक गीत उनकी आवाज में हम सुनते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। उम्मीद करता हूँ यह नगमा भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा।

बहुत ही खूबसूरत सा लाइफ स्टाइल शो था दोस्तों साथी, और चलते इसी लाइफ स्टाइल शो से निकाल गई हुई बहुत ही खूबसूरत गीत हम आपके लिए पेश कर रहे हैं।

उधर साथ याद कीजिएगा उसी के साथ ये कार्यक्रम आप सभी रेडियो ब्रिजवानी पर सुन रहे हैं। अभी और भी हम गीत आशा भोसले की आवाज़ में पेश करेंगे लाइव उनकी आवाज़ में, पर उससे पहले हम आप सभी से कहना चाहते हैं कि पिछले सप्ताह भारतीय समाज एक्सलेंस इन स्पोर्ट्स अवार्ड्स था यहाँ ब्रिस्बेन सिटी हॉल में, और बहुत से पार्टिसिपेंट्स थे और फाइनलिस्ट थे हमारे मास्टर गंगा प्रसाद जी, उन्हें गोल्ड मेडल अवार्ड मिला था भारतीय समाज की ओर से। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, विशिंग यू द वेरी बेस्ट। और हम जानते हैं कि आप स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, लेक्चरर भी आप थे और स्कूल टीचर भी आप थे और बहुत से काम आप कम्युनिटी में करते हैं और बहुत से हेल्प इत्यादि दोस्तों को करते हैं, परिवार को करते हैं। इसके लिए आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा स्पोर्ट्स एक्सेलेंस अवार्ड मिला है। ब्रिस्बेन के जितने भी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और जितने भी परिवार दोस्त हैं, सभी की ओर से, हमारी ओर से विशिंग यू द वेरी बेस्ट। और इस तरह के अवार्ड्स आप हमेशा जीते हैं। दोस्त साथियों, एक और चीज़ हम बताना चाहते हैं कि अगर आप टिपिंग पॉइंट देखते हैं चैनल 9 या चैनल 10 पर शाम 5 बजे से, तो थोड़ी दिन में मिस्टर गंगा प्रसाद भी एक उसमें कॉन्टेस्टेंट रहेगा। और जैसे हमें पता चलेगा कि किस तारीख को उनका जो शो है लाइव ब्रॉडकास्ट होगा, हम आप सभी को बतलाएंगे। तो याद कीजिएगा, टिपिंग पॉइंट अगर आप देखते हैं उसमें आप कुछ दिनों बाद हमारे ब्रिस्बेन के मास्टर गंगा प्रसाद को देखेंगे। ही इज टेकिंग पार्ट इन देयर। और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे सोसाइटी में इतने अच्छे बड़े लोग हैं जो हमारे सोसाइटी को और आगे ले जा रहे हैं, फोर्ड ले जा रहे हैं। और मास्टर गंगा प्रसाद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत से गीत आशा भोसले की आवाज़ में हम आपके लिए पेश करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये गीत आपको बहुत ही अच्छा लगेगा।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे, उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हां थोड़ा प्रणत भजित। एक बार फिर सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके असी थोड़े कोल आ रहे हैं।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: जितने भी भाई बहन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत ही खूबसूरत संगीत। उम्मीद करता हूँ ये नगमा आपको बहुत ही अच्छा लगेगा।

हमारी माफ कीजिएगा, लगता है किसी तरह टेक्निकल प्रॉब्लम है, अभी इसे हम सुधार कर आपके लिए पेश करते हैं। फिर भी चलते हैं, जो गीत हम आपके लिए पेश कर रहे थे उसे हम आपके लिए एक बार फिर बजाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह नगमा आपको अच्छा लगेगा। एक बार फिर जितने भी भाई बहन हैं ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप सभी के लिए रेडियो ब्रिजवानी पर

0: just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: Queensland vich har saal jangla vich ag lagdi hai. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰ।
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
4: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
5: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
6: दोस्तों, साथियों, कार्यक्रम बढ़ाते हुए चलते हैं। कार्यक्रम में बहुत ही खूबसूरत संगीत और फरमाइश करने वाले शिवन श्रुती रवि प्रताप आप दोनों के लिए। माफ कीजिए, बहुत ही खूबसूरत संगीत, जो गीत हम बजाना चाहते थे वो है बहुत ही खूबसूरत संगीत, तो वो भी है आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में आप सभी के लिए रेडियो प्रिजवानी पर। चलते हैं, वही खूबसूरत संगीत आप सभी के लिए हम पेश करते हैं।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

वैसे के साथ एक कार्यक्रम आप सभी रेडियो ब्रिजवानी पर सुन रहे हैं। और याद कीजिएगा ठीक 2:30 बजे कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। स्टूडियो के घड़ी के अनुसार ठीक 2:05 रह चुका है। 2:30 से 5 बजे तक आप सुख के साथ कार्यक्रम सुन सकेंगे।

एक बार फिर लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में आप सभी के लिए बहुत ही खूबसूरत गीत रेडियो बिजवानी पर आप सभी सुनने जा रहे हैं। 10 मिनट हो गया है 2 बजकर और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी के लिए एक बार फिर फरमाइश करने वाले शिवांशवती गंगा और गीता प्रसाद।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Hi, this is Amitabh Bachchan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
10: से। To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
11: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane।

और दोस्तों आप इसी गीत के साथ साथ हम अपने कार्यक्रम के समाप्ति पर पहुंच गए। उम्मीद करता हूं कि आज का कार्यक्रम आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमारी और आपकी मुलाकात अगले रविवार के शाम ठीक 12:30 बजे से होगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, रुखसत हमें रेडियो बनमत में कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी देर में आप सभी के साथ कार्यक्रम सुन सकेंगे। उनका साथ 5 बजे तक दीजिएगा। साथ देने के लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए हैव अ ब्यूटीफुल वीकेंड एंड अ वेरी ब्यूटीफुल वीक। और कुछ जहाँ पर कल छुट्टी रहेगा बैक साइड में एका के लिए, और वेंसडे के लिए भी एक छुट्टी है, पब्लिक हॉलीडे है, याद कीजिएगा। अगले सप्ताह मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते, हैव अ प्लेजेंट आफ्टरनून, शब खैर और विनाका।

दोस्तों, आप सभी सुनने वालों को एक बार फिर हमारा प्यार भरा नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम, अस्सस्रियाकाल। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विजवानी 1701, हमारे स्टूडियो 17 माइल्स रॉक्स ब्रिस्बेन से। आपके साथ सूर्तियाँ दोस्तों, अभी आपके साथ दिया रोय सिंह ने, और ठीक 5 बजे तक आपका हमारा साथ शाम का सफर पर। और कहो कैसे हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। Hope everyone is enjoying a beautiful weekend. It's a relaxing weekend. अब इसे ब्रिस्बेन के वेदर के बारे में कहा जाए कि आज देखा जाए तो इट्स अ ब्यूटीफुल डे आउटसाइड टुडे। ना बहुत ठंडी ना बहुत गर्मी, जस्ट नाइस। इसी के साथ साथ अगर आज आपकी शादी की सालगिरह है, आज आपके जन्मदिन है, कुछ भी खुशियां आपके पास है, हमारे साथ आप बांट सकते हैं 3279-1701 पर, नहीं तो आप हमारे मोबाइल पर SMS करें। जन्मदिन और शादी की सालगिरह, बहुत सारे से बधाइयां अगर आपकी आज शादी की सालगिरह है या जन्मदिन। आज आपके साथ सो प्यारा से सफर में हम आपके लिए एक प्यारा सा प्रोग्राम लेकर आए हैं दोस्तों। बहुत कुछ चल रही है, आपको पता है महीना क्या है, सावन का महीना और रक्षाबंधन का महीना। आप शामिल होना चाहते हैं सावन के गीत पर, या रक्षाबंधन अपने किसी भाई को आप डेडिकेट करना चाहते हैं, हमारा फोन नंबर नोट करें 3279-1701 हमेशा की तरह। तो देखे सावन का ये त्योहार लाया खुशियों की बहार, भोलेनाथ की सदा हो जयकार। दुख से मुक्ति मिले सदा आप सभी को। हैप्पी सावन।

पहला गीत सावन पर हमने लिया आया सावन झूम के। आप सभी के लिए जो आज रेडियो विश्वानी सुन रहे हैं।

जी हाँ दोस्तों, आपने सुना आया सावन झूम के। सावन की त्योहार आप सभी को शुभ हो। रफी और लता की आवाज में आपने सुना।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Sasrikaal, madam, namaskar, dosto, maina thoda prathat pajit. Ek bar fir Satrangi Ping Australia Tour 2026 ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ
3: The legend Harbhajan Mann live in Brisbane Saturday 15th August 6:30 PM
2: ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ Brisbane ਵਿੱਚ
3: at Brisbane Central Auditorium Mount Gravatt Tickets at Premier Tickets
4: समय की ओर देखा जाए दोस्तों हमारे स्टूडियोज में 2:15 बज चुके हैं आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्वानी 1701 और आज आपके साथ सो तो चलते हैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अगला गीत क्या मैंने लिया है जी हाँ राखी पर अगला गीत है और कहते हैं कि राखी कर देती है सारे गिले शिकवे दूर इतनी ताकतवर है होती है राखी कि कच्चे धागे की पवन की डोर हैप्पी रक्षाबंधन एवरीवन भाई बहन का प्यार आप सभी को बना रहे

पर बहुत प्यारा गीत आपने सुना। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्वानी 1701। दोस्तों अगर आपने अभी ट्यून इन किया है, स्वागत है आप सभी का रेडियो विस्वानी एम पर। आपके साथ सुए है शाम का सफर। तो चलते हैं दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे से फरमाइशें, लोग अपना गीत सुनने के लिए ऑलरेडी इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं लॉस एंजलिस लास वेगास दिनेश सोलंकी अध्यक्षा सोलंकी अगला गीत सुनना चाहते हैं। तो आप दोनों के लिए बहुत प्यारा सा गीत है जिसे मैंने लिया है सावन पर।

0: तो हमारे साथ इस गीत में शामिल हो गए थे लिस्बन से दक्षा सोलंकी और दिनेश सोलंकी।
1: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। A place to call home, खोजो।
0: अगले गीत की फरमाइश हमारे पास दोस्तों राखी पर आई है और राखी पर आज किसने अगला गीत की फरमाइश किया है? जी हाँ, अगला गीत की फरमाइश करने वाली है सैक्रामेंटो USA से ललिता गौतम और आज अपने भैया को बहुत सारे से प्यार राखी पर भेज रही है, आशीर्वाद भेज रही है और बहुत प्यारा से गीत है। उनके भाई का नाम है केशव शर्मा फ्रॉम सैक्रामेंटो USA। आपकी फरमाइश पर सुनते हैं अगला गीत।

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग, इसके लिए हमारे पास और भी मैसेजेस आए हैं, पीपल लव दिस सॉन्ग। और जिसकी फरमाइश करने वाले थे रजेनो मालती प्रसाद फ्रॉम ग्रीन एका सिडनी।
1: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। अते लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider.
0: और दोस्तों आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विश्वानी 1701। हम चलते हैं अगला गीत की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास अगला गीत जो है एक श्रद्धांजलि इमोशनल गीत की फरमाइश आई है और खास फरमाइश हमारे पास आई है आचाफिल से अनवर और शेरुल की ओर से। बहुत दुख की बात यह है कि अनवर के बड़े भाई का डेथ आज सुबह बाफीजी में हो गया, बा लोटका मेरे ख्याल से, सॉरी बा ओतावा में उनकी डेथ हो गई है। और याद कर रहे हैं यहाँ से अनवर शहरुल और सभी परिवार, उनके परिवारों को। चलते हैं अगला गीत सुनते हैं। हम यही ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनके आत्मा को शांति दे। अनवर और शहरुल उनके परिवार, आप सभी ने फरमाइश किया अगला गीत।

जाने चले जाते हैं कहाँ, हमें क्या पता कहाँ चले जाते हैं। मुकेश की आवाज का ब्यूटीफुल सॉन्ग आपने सुना और खास फरमाइश हमारे पास आई थी आचफिल से अनवर शहरुल और उनके परिवार की ओर से। और एक बार फिर दोस्तों, अगर आपने नहीं सुना है तो आप अगर कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो अनवर के बड़े भाई का डेथ आज सुबह फिजी में हो गई है। और अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं कि ऊपर वाले उनकी आत्मा को शांति दें। हम चलते हैं मरम्बा डांस की ओर दोस्तों। क्रिस और विनी सिंह हमें सुन रहे हैं। क्रिस और विनी सिंह, आपका बरसात का मौसम बहुत अच्छी लगती है ना, चलते हैं सावन पर एक गीत सुनते हैं। बहुत प्यारा सा गीत, क्रिस और विनी सिंह फ्रॉम मरम्बा डांस।

फिल्म का नाम भी था प्रेम रतन धन पायो, जिसे फरमाइश करने वाले थे गंगा और गीता फ्रॉम रेड बैंग। आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वाणी। 20 मिनट हो गए हैं दोस्तों हमारे स्टूडियोज में 3 बजकर। पाँव में यदि ज्ञान हो तो मंजिल हमसे दूर नहीं, आंखों में यदि पहचान हो तो इंसान हमसे दूर नहीं, दिल में यदि स्थान हो तो अपने हमसे दूर नहीं है, भगवान में यदि ज्ञान हो तो भगवान भी हमसे दूर नहीं, अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो या उसकी मजबूरी नहीं, आपके साथ लगाव और विश्वास है। चलते हैं अगले गीत की ओर, हम बढ़ते हैं मेनली वेस्ट की ओर चलते हैं। हमें सुन रही वहाँ पर हमेशा की तरह लक्ष्मी, लक्ष्मी चलते हैं आपके लिए बहुत प्यारा सा एक नया गीत सुनते हैं।

0: फरमाइश करने वाली थी लक्ष्मी जो हमें सुन रही है मिल्ली वेस्ट में।
1: आर यू रेडी टू स्टॉप रेंटिंग एंड थिंकिंग अबाउट ओनिंग वन और मे बी एन इन्वेस्टर लुकिंग टू इन्वेस्ट? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote, code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर। याद रहे 0400-644-435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
7: Hi, this is Amitabh Bachchan.
8: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
10: Hi, this is Salman Khan.
11: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
12: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
13: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
14: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
15: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
16: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
0: और मैं हूँ सु, आप सुन रहे हैं रेडियो बिस्वानी। 3:30 बजने वाले हैं हमारे स्टूडियोज में हर शाम का सफर। और आज आपके साथ सु एक बार फिर चलते हैं अगली फरमाइश से पहले आपके लिए हम कुछ लेकर आए हैं, तो सुनते हैं क्या है रोशनी के बारे में। एक कमरे में दो मोमबत्तियां रखी थी दोस्तों। पहली बोली, मैं क्यों जलूं, जलते जलते तो मैं खत्म हो जाऊंगी। दूसरी ने मुस्काई और बोली, अगर नहीं जलूंगी तो मेरा होना है किस काम का। रात हुई, दूसरी मोमबत्ती जलाई गई, उसे पूरे कमरे में उजाला कर दिया। पहली मोमबत्ती सुरक्षित तो रह गई, लेकिन अंधेरे में पड़ी पड़ी कभी किसी के काम नहीं आई। सुबह पहली ने दूसरी से पूछा, क्या तुम्हें खत्म होने का दुख नहीं हुआ? दूसरी ने मुस्कुराकर कहा, मैं खत्म नहीं हूँ, मैं किसी की जिंदगी में रोशनी बन गई। चलते हैं लॉस एंजलिस की ओर, और जहाँ पर हमें सुन रहे हैं विनय प्रेमिला, साथ में हैं क्रिस्टीन और राया। जी हाँ, राया, क्रिस्टीन, विनय प्रेमिला, रोनील, आप सबके लिए अगला गीत।

तो लॉस एंजलिस एलआई से हमारे पास फरमाइश आई थी राया, क्रिस्टीन, रोनील, विनय और प्रमिला की ओर से. आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी. हम शिकागो की ओर बढ़ते हैं दोस्तों. फरमाइश है अमला सिंह की ओर से. आप सुनना चाहते हैं शशि कपूर शबाना आजमी की फिल्म फकीरा से लिवा.

बहुत प्यारा गीत आपने सुना लता जी की आवाज में, जिसे फरमाइश करने वाली थी अमला सिंह, जो हमें सुन रही हैं शिकागो में। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी, आपकी अपनी पहचान। चलते हैं माँ की थाली के बारे में कुछ सुनते हैं। जी हाँ, रात के करीब 10 बजे थे। बेटा पूरे दिन ही मेहनत करके घर बात लौटा। उसने माँ से पूछा, माँ अपने खाना खा लिया? माँ मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा, मैं तो कब की खा चुकी हूँ। बेटा खाना खाने बैठा, थाली में बस 2 रोटियाँ थी। खाना खत्म होने के बाद वह पानी लेने रसोई में गया। वहाँ उसने देखा चूल्हा ठंडा था, बर्तन खाली थे और माँ सिर्फ 1 गिलास पानी पीकर सो गई थी। उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। उसे समझ आ गया कि माँ ने खाना नहीं खाया था। उसने अपना हिस्सा भी बेटे के लिए छोड़ दिया। उस रात बेटे ने एक बात सीखी, दुनिया में सबसे अमीर इंसान वह नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बल्कि वह जिसके पास माँ की जैसी दौलत होती है। चलते हैं, हमारे पास से फरमाइश है फॉरेस्ट लेक से, मिस्टर एंड मिसेस सेतराम की ओर से, आप दोनों के लिए अगला गीत।

पेश करने वाले थे जोनी और सविता फ्रॉम केड्रोन पार्क। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्वानी 1701। इस वक्त हमारे स्टूडियोज के घड़ी में 4:15 बज चुके हैं।

मेरी मस्तानी नैनी से मैंने लिया था लेटेस्ट एल्बम से दोस्तों। इसी के साथ साथ हमारे स्टूडियोज के घड़ी में बस 4 मिनट रह गए हैं 4 बजने में। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्वानी 1701 है शाम का सफर, और शामिल हो गए हमारे साथ परमाटा सिडनी से रोबिन और उषा। रोबिन और उषा आप दोनों के लिए राजस्थान एल्बम से लिया गीत पेश है।

सावन पर बहुत प्यारी जिसे मैंने लिया था राजस्थान एल्बम से और आज हमारे साथ शामिल हो गए थे इस गीत में, यानी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं रॉबिन एंड उषा फ्रॉम पैरामाटा सिडनी। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी। 4 मिनट 1 मिनट हो गए हैं 4 बजकर हमारे स्टूडियोज के घड़ी पर है शाम का सफर दोस्तों, और साथ हमारा है आपका ठीक 5 बजे तक। पेड़ कभी अपने फल खुद नहीं खाता, आप सभी को पता है, और नदी कभी अपना पानी खुद भी नहीं पीती, सूरज कभी अपनी रोशनी अपने लिए नहीं रखता, फूल अपनी खुशबू खुद के लिए नहीं बिखेरता, इंसान भी जब सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी जीना सीख जाता है तभी उसका जीवन सच में सफल कहलाता है। सोचिए, दुनिया में लेने वाले बहुत है लेकिन देने वाले बहुत कम। अगला गीत की फरमाइश है हमारे पास फॉरेस्ट लेक से हाफिज अली खान और जबीदा खान की ओर से।

महेंद्र कपूर की आवाज का ब्यूटीफुल सॉन्ग और फरमाइश करने वाले थे फॉरेस्ट लेक से हाफिज अली खान और जबीदा खान। अगला किच्चू है दोस्तों सावन पर, बहुत प्यारा सा गीत है।

0: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: Hi, this is Amitabh Bachchan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: Hi, this is Salman Khan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: Hi, this is Deepika Padukone और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
10: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
12: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
13: चलते हैं दोस्तों अगले गीत की फरमाइश है हमारे पास, और फरमाइश किसने किया है? जी हाँ, फरमाइश है सिडनी से सनी और रामिजा की ओर से। आप दोनों के लिए लेटेस्ट बीट्स पर सुनते हैं चूड़ी मजा न देगा।

प्लेयरफुल सॉन्ग, चोरी मजा ना देगा, कंगन मजा ना देगा। सिडनी बैंकस्टाउन सिडनी से फरमाइश थी हमारे पास सनी और रमीजा की ओर से। दोस्तों बस 10 मिनट हो गए हैं हमारे 18 मिनट हो गए हमारे स्टूडियोज में, 4:07 रहेगा हमारा आपका ठीक 5 बजे तक शाम के सफर पर। इस प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं हमारे स्टूडियोज यहाँ 17 माइल्स रॉक्स ब्रिस्बेन से आपके साथ। सो शामिल हो गए हमारे साथ, यानी कि हमारे साथ ड्राइव पर इस वक्त शैला पाक से विजय, शशि और प्यारे से छोटे से बेबी है हमें बताया, एंड एंजॉयिंग द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। आपके लिए सावन पर बहुत प्यारा सा भोले बम का गीत है।

इसकी कोई फरमाइश करने वाले थे विजय अवस्था शी फ्रॉम शैला पार्क जो हमारे साथ सफर पर है. हैव अ नाइस संडे आफ्टरनून ड्राइव एंड थैंक्स फॉर योर फीडबैक एज वेल. और हम चलते हैं अगले गीत की ओर बढ़ते हैं दोस्तों. अगला गीत जो है फरमाइश है हमारे पास मेलबर्न से. और मेलबर्न में आज हमारा प्रोग्राम सुन रहे कौन? एल्फ्रेड और किरण प्रसाद. चलते हैं आप दोनों के लिए अगला गीत.

गेस्ट तो हमारे पास फरमाइश थी इस गीत के लिए मेलबर्न से एल्फ्रेड और किरण प्रसाद की ओर से। चलते हैं नानी तेरी मोनी, तो गीत आपने सुना होगा लेकिन आज गीत कुछ अलग अंदाज पर आप सुनने जा रहे हैं।

फरमाइश है। दोस्तों हमारे पास अगला गीत के लिए कैलिफोर्निया यूएसए से मैक्स प्रसाद की ओर से मैक्स चलते हैं आपके लिए। बहुत प्यारा से गीत है।

जरूर दोस्तों, हमारे साथ शामिल हो गए थे मैक्स प्रसाद इस गीत में फ्रॉम कैलिफोर्निया USA. आप सुन रहे रेडियो विस्पानी, आपकी अपनी पहचान, और साथ है हमारा सिर्फ 5 बजे तक. याद रहे आपके साथ हो जाएगी शशि चौखन 5 बजे से. चलते हैं, थोड़ा और समय है, कुछ सुनते हैं कि देखे कि अपना कौन होता है. दोस्तों, एक लड़के ने अपनी माँ से पूछा अपना कौन होता है. माँ ने उसे एक दीपक दिया और कहा आज रात इसे लेकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ. वह चला गया. कुछ लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, कुछ लोगों ने पूछा नहीं कि वह कैसा है, लेकिन एक बूढ़ी औरत ने उसे अंदर बुलाया, पानी पिलाया और कहा रात हो गई है, पहले आराम कर लो. सुबह माँ ने पूछा क्या समझे. लड़का बोला अपना वही होता है जो अंधेरे में भी तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दे. माँ मुस्कुराई और बोली रिश्ते खून से नहीं व्यवहार से होते हैं.

कुमार का गीत बहुत बड़ा सा गीत, दुनिया चले अगाड़ी, दुनिया चले पिछाड़ी तो मैं चलूँ अगाड़ी, चिंता ता चिता चिता आप सभी।

0: हटो हटो हटो हटो हटो।
1: अरे देखो मेरे पति को क्या?
0: आप फिक्र मत करिए, मैं हूँ ना।

और दसवें सी के साथ साथ हमारे स्टूडियोज में पौने पांच बज चुके हैं। हमारा आपका साथ आज यहीं तक था। साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिएगा, हमारे बाद 5 बजे से आपके साथ हो जाएंगी शशि चौहान। और हमारी अगली मुलाकात है नेक्स्ट सैटरडे 1 PM से शनिवार मस्ती म्यूजिक पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। हैव अ नाइस वीक। नमस्ते। खुदा हाफिज़। टेक केयर। लव यू ऑल। गुड बाय।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

साथ कहते हैं कि सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, पर हंसते रहो तो क्या है, जहान है जिंदगी। ठीक है, हाँ जी, करती हूँ आप सभी का स्वागत। मैं शशि जोखन, एक रंगीन शाम आपके नाम, एक बार फिर रविवार की शाम हो गई हूँ आपके साथ और कहती हूँ आपको नमस्कार, कैमचो, सास्रियकाल और अस्सलाम वालेकुम। और लेते हैं प्रभु का नाम और करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत।

0: जी कहते हैं ना कि देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी।
1: रंगीन शाम आपके नाम शशि जोखन के साथ,
0: और इसके

0: हाँ जी, शुरुआत हो गई है कार्यक्रम की और आप हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, कैसा बीता आपका वीकेंड? मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि बहुत ही बढ़िया गया होगा। और ऑफ कोर्स मौसम में तो कुछ आई सपोज कभी धूप कभी छाँव, मगर फिर भी कभी धूप कभी छाँव, जब धूप निकलती है तो फिर ऑफ कोर्स जी खुश होता है, मगर छाँव भी होती है तो आप बाहर जाकर कुछ काम वगैरह कर सकते हो ना, गार्डनिंग वगैरह, एंड इट फील्स गुड। और इसके साथ साथ आज तो आप बिल्कुल तैयारी में लगे हुए होंगे कि कल कल नौकरी है, और फिर उसके साथ साथ बच्चे भी अगर स्कूल जाना है उनको, तो आप उनके लिए भी तैयारी कर रहे होंगे ना। मगर देखिए, साथ इसी तरह देते ही रहिए, और हम आपको नए और पुराने गीतों का जो संगम मैं लेकर आती हूँ, इससे आपकी जी बहलाते ही रहूंगी। और हाँ, ऑफ कोर्स आप सुन रहे हैं
1: मैं तनहारा, मैं मनहारा।

हाँ जी, मुझे पता है कई देशों से लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं, रेडियो ब्रिजवानी के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। सो आप जहाँ से भी हमारा साथ दे रहे हो, आपको मैं तहे दिल से इस कार्यक्रम में शामिल कर रही हूँ एंड कहती हूँ आपको कि आई होप यू हैड अ ग्रेट वीकेंड, ठीक है। एंड हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया में हमारे जितने भी लिसनर्स आज सुन रहे हैं, ब्रिस्बन में या फिर कहीं पर भी ऑस्ट्रेलिया से, तो याद रखिए, मुझे उम्मीद है कि आप भूले नहीं हो कि सेंसस डे, ऑस्ट्रेलियन सेंसस डे इज हैपनिंग ऑन ट्यूसडे 11th ऑफ अगस्त। उसके बारे में मैं चर्चा अभी कुछ ही देर में करूंगी, मगर अभी तो हम चलते हैं गीतों का। जो नए गीत अभी मैं आपके लिए बजा रही हूँ ना, ये आयुष शर्मा की फर्स्ट फिल्म जो थी लव यात्री, इसी से इस गीत को हमने आपके लिए चुन रखा है। सो एंजॉय।

जी फिल्म लव यात्री से ली गई ये नगमा और आयुष शर्मा। आप सोच रहे होंगे कि आयुष शर्मा भला कौन है। आयुष बहुत ही प्यारा सा नाम है। आयुष अगर आप कार्यक्रम सुन रहे हो तो वेलकम टू एक रंगीन शाम आपके नाम। ठीक है, तो आयुष शर्मा के साथ वरीना हुसैन। आयुष शर्मा एक्चुअली सलमान खान के जीजा जी है और पहली फिल्म में आप इसे इस फिल्म में अगर आप इस फिल्म को देखे होंगे तो वो उनके जीजा जी है, जीजा जी या बहन की पति जी, और फर्स्ट फिल्म था उनका। तो एनीवे चलते हैं। ये जो मैं आपको बताने वाली थी कि जो सेंसस डे है ना, तो ऑस्ट्रेलिया में अगला सेंसस नाइट मंगलवार 11 तारीख अगस्त को होगी और हिंदी में इसे जनगणना कहते हैं। या आई गॉट इट राइट? यस। ये हर 5 साल में आयोजित की जाती है और इसमें ऑस्ट्रेलिया में मौजूद सभी नागरिक को, आप सोच रहे होंगे कौन कौन से लोग को सेंसस में भाग लेना है, तो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद सभी नागरिक, स्थायी और अस्थायी वीजा धारकों, जैसे कि आप स्टूडेंट्स हो या टूरिस्ट सहित, इन इसमें भाग लेना अनिवार्य है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे पूरा ना करने पर प्रतिदिन $364 तक का जुर्माना हो सकता है। तो याद रखिए, नोट कर लीजिए, अपने डायरी में नोट कीजिए, फोन में भी नोट कर लीजिए, सभी कुछ, सो दैट यू डोंट मिस। ठीक है, और जैसे हमने कहा 11 तारीख अगस्त, आज तो 9 है, 9 तारीख है आज रविवार का दिन, और 11 तारीख अगस्त को ये होने को है। दिस इज ट्यूसडे, मंगलवार का दिन। और इसके साथ साथ देखिए कौन, जैसे हमने आगे कहा कि कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं, एक बार फिर बताती हूँ। ऑस्ट्रेलिया में उस रात मौजूद सभी नागरिक, पीआर हो या ना हो आपके पास, स्टूडेंट्स और टेम्प्रेरी वीजा होल्डर्स भी इसमें भाग लेने की बेशक जरूरत है। तो आप इसे नोट कीजिए एंड अगर आप भूल जाते हो तो किसी को बता दीजिए, आपको याद दिला दे, ठीक है ना। और सो ये थी सेंसस के बारे में। तो अगला गीत जो है वो फिल्म वो टू से हमने ली है आपके लिए, इसे भी आप सुनिए इन द मीन टाइम। और मैं आपको अभी बताऊंगी कि आज पारिवारिक विषय में क्या लेकर आने वाली हूँ।

जी, पूरे 7 बजे तक मैं आपका साथ दूंगी। मैं शशि जोखन हर रविवार को आ जाती हूँ आपका साथ देने के लिए, और आप भी ऐसे हमारा साथ देते ही रहते हैं, विच इज वेरी गुड। अदरवाइज हमको ऐसा लगेगा हम खुद से ही बातें कर रहे हैं, है ना। सो एनीवे, पारिवारिक विषय की ओर चलते हैं जो 6 बजे के बाद मैं लाऊंगी आपके लिए। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर जानकारी दूंगी आपको जो हम में से बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं, फ्लाइट्स लेते हैं, एक देश से दूसरे देश, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं ना। तो कई बार हम फ्लाइट के दौरान हल्के फुल्के ट्यूबलेंस महसूस किया करते हैं ना, तो आज मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दूंगी, ठीक है। तो ये 6 बजे के बाद, यू नो कि आखिर में ट्यूबलेंस होता क्यों है, तो इसके बारे में आपको कुछ बताऊंगी। ऐसे ही सुनते ही रहिए, अभी मैं बताऊंगी जो अंग्रेजी शब्द, इंग्लिश शब्द जिसके लिए आपको हिंदी शब्द ढूंढना पड़ता है ना, वो मैं लेकर आऊंगी। एक्चुअली अभी थोड़ी देर में बताऊंगी, अभी तो चलते हैं एक और गीत हम सुन लेते हैं। गीतों का संगम है ना, तो गीत ही सुनेंगे हम अभी।

अच्छा जी, आपको मैं शायद पिछले सप्ताह बताई थी कि सूर्य ग्रहण 12 तारीख अगस्त को सूर्य ग्रहण लगने वाली है। तो इस वर्ष 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण 12 तारीख अगस्त को होने को है, जो बुधवार का दिन है। और लेकिन ये कहा गया है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में दृश्यमान नहीं होने को है। दैट्स ओके। तो ये जानकारी सिर्फ मैं आपको देना चाहती थी कि ये टोटल 16 इक्लिप्स इसे कहते हैं, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। और भारतीय समय अनुसार टाइमिंग 12 अगस्त की रात लगभग 9:04 PM से 13 तारीख अगस्त की सुबह 4:25। सो दिस इज भारतीय समय के अनुसार, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में अलग होगा, जिस भी देश में आप रह रहे हो वहाँ अलग टाइमिंग होगा। हाँ ओके। चलो, ये थे जानकारी आपके लिए। एंड हाँ जी, जो आज का जो शब्द है वो है सन, ठीक है, SUN। सो सन की जो हिंदी शब्द है इसे आप ढूंढ कर लाइए, मैं 7 बजे से कुछ पहले आपको बताऊंगी जो मेरे पास आंसर है, ठीक है। इट्स द वर्ड इज सन। अच्छा जी, तो एक और गीत सुनते हैं। और इस बार जो नगमा आपके लिए मैं लेकर आई हूँ वो फिल्म दिल से है, दिल से हमने इसे ली है आपके लिए। थोड़ा पुराना नगमा है मगर फिर भी बहुत ही पॉपुलर गीत थी ये अपने समय के, अभी भी लोग पसंद करते हैं इस नगमे को।

इस फिल्म में शाहरुख खान दिखे थे और मेन लीड रोल में थी, और उनके साथ इस गाने में मलाइका अरोरा थी. सो एनीवे, देखिए, प्रियंका चोपड़ा के बारे में तो आप सभी जानते ही है ना, हु इज़ बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल बॉलीवुड की दुनिया में. एंड ऑफ कोर्स एक ऐसी एक्ट्रेस है, मैं कहूँगी अब तो बहुत ही वर्सेटाइल एक्ट्रेस हो गई है, और अब एक बच्चे की माँ भी हो गई है, और बहुत ही ग्लोबल आइकॉन हो गई है, मैं तो यही कहना चाहती हूँ. और अब तो वो प्रियंका चोपड़ा जोनस के नाम से जानी जाती है, और उन्होंने कई फिल्मों में काम की है, नए और पुराने गीतों में, फिल्मों में आपने उसे देखे होंगे. मगर अभी हाल ही में अभी उन्होंने बॉलीवुड में वापस कदम रखी हुई है, क्योंकि वो कुछ समय से हॉलीवुड में काम कर रही थी. तो अब उनकी एक नई फिल्म आने वाली है जो एकेडमी अवार्ड विनर रसल क्रो, हाँ जी, सो उनके साथ वो एक एक्शन थ्रिलर करने जा रही है, ब्लू फ्लाई, ठीक है, डायरेक्टेड बाय निमरोद अंटल. और ये जो फिल्म है ये इसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, और शायद ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में, हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में इसकी जो प्रोडक्शन स्केड्यूल की गई है लेटर दिस ईयर. और ये एक्चुअली ये प्रियंका चोपड़ा के लिए एक और मेजर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट होगी, द ब्लफ और हेड्स ऑफ स्टेट, और रिसेंटली अनाउंस जो सर्वाइवल थ्रिलर रीसेट ऑपोजिट ऑलैंडो ब्लूम, तो ये उनकी अगली मेजर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट होगी. तो शायद गोल्ड कोस्ट में आप इन्हें देख भी सकेंगे अगर आप ब्रिस्बेन में हो. सो एनीवे, तो चलो इन्हीं की एक फिल्म से ली गई नगमा आपके लिए. आई एम श्योर आप इस गीत को ऑफ कोर्स पहचान लोगे, बहुत ही पॉपुलर थी ये सॉन्ग. फिल्म दोस्ताना से ली गई.

हाँ जी, प्रियंका चोपड़ा बेशक शी हैज रॉक द वर्ल्ड, है ना. सो एनी वे शी इज वन एक्ट्रेस जो बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखी और बहुत सक्सेसफुल भी हुई, मगर वहां पे भी कुछ ऐसे लोग थे जो उन्हें नहीं पसंद करते थे. वैसे तो सभी के साथ ऐसा होता है ना, यू कांट हैव एवरीबॉडी लाइकिंग यू, बट फिर भी वो कहती थी कि कोई बात नहीं, मैं आगे कदम बढ़ाऊंगी और यहां से हटकर कुछ अलग करूंगी. सो एंड दैट्स व्हाट शी डिड, एंड शी ऑलवेज सेड दैट कि देखिए, यू कैन लव मी और यू कैन हेट मी, बट यू कैन नॉट डिनाई मी. इज़न्ट दैट करेक्ट? सो ये तो लोगों की अपनी अपनी राय होती है एक इंसान के बारे में ना, तो मगर अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आगे बढ़िए, अपना काम खुद करिए. कहते हैं ना कि इंसान हमेशा कल के भरोसे जीता है, पर भूल जाता है कि आज ही उसका अपना है. सो जो करना है आज ही करिए, और जिस दिन जिंदगी की डोर छूट जाती है ना, उसी दिन इंसान के सारे अधूरे सपने और जो भी योजनाएं होती है वो बस धरी की धरी ही रह जाती है. मानते हो ना? सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ. थोड़ा समझो मैं क्या बोल रही हूँ. सब कुछ ऐसा ही रह जाएगा, फिर ना कल करेंगे कि मोहलत मिलती है, और ना गलतियों को सुधारने का मौका, ना अपनों से माफी मांगने का समय. ठीक है, तो समय के पास इतना समय नहीं कि वे आपको दोबारा समय दे सके. ठीक है ना, समझ गए? सो हर दिन को अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन मानकर जी लेना ही बुद्धिमानी है. इसलिए कल का इंतजार मत करो, जो करना है वो आज ही करो. ठीक है, वरना आपके जो आजू बाजू लोग वो तो पछताते ही रह जाएंगे, आपकी जो आत्मा है वो भी शायद आपको माफ ना करे. सो चलो, इन्हीं की फिल्म से ली गई एक नगमा. फिल्म डॉन से ली गई ये नगमा, शाहरुख खान के साथ पर्दे पर दिखी थी वो.

हाँ जी, फिल्म डॉन का ये नगमा आप सुन रहे थे। और हाँ जी, आपको याद है या नहीं कि भारत का स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 तारीख अगस्त का मनाया जाता है ना, और इस वर्ष भी 15 तारीख अगस्त को। एंड 15 तारीख अगस्त इज अ सैटरडे, ठीक है, सैटरडे। तो 15 अगस्त 1947 को भारत को लगभग 200 वर्षों के बाद ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी, पता है आपको ना। और ये दिन देश के महान स्वतंत्रता लोगों को याद करके, जो सैनिक लोग हैं उनका बलिदान और संघर्ष की याद दिलाता है लोगों को। तो चलो ये गाना सुनते हैं, और जितने भी भारतवासी हैं और भारत से प्रेम करने वाले हैं, सभी के लिए ये नगमा। अगर आपके एंसेस्टर्स भारत से है तो ऑफ कोर्स भारत से प्रेम करना बनता ही है आपको।

रहे हैं एक रंगीन शाम आपके नाम। मैं शशि जोखन आपका साथ दूंगी ठीक 7 बजे तक। और आज की इस खास कार्यक्रम में आपको मैं याद कर रही हूँ और आपको शामिल कर रही हूँ कार्यक्रम में। हाँ जी, तो देखिए एक और शायद आपको याद होगा, अबाउट 29-30 ईयर्स पहले, एक्चुअली 1997 को एक फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म का ये जो गाना, चाहे आप 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, हमेशा सुनाई देता है। और इस गाने में फौजी भाइयों का जो दर्द है और उनकी हकीकत है, आपने सुना क्या इस गाने को? जिस गाने को मैं बोल रही हूँ, जिसके बारे में मैं बता रही हूँ, ये संदेशे आते हैं। यस, यू गॉट इट। तो इस गाने के बोल जावेद अख्तर जी ने लिखे थे और इसको संगीत दिया था अनु मलिक जी ने, और सोनू निगम और रूप कुमार की शानदार आवाज ने इस गाने में एक ऐसी जान डाली कि हर फौजी और हर शख्स इससे खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर पाया। और इस गाने को सुनने के बाद हर किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इतने सालों बाद भी ये गाना देशभक्ति गानों की प्लेलिस्ट और देशभक्ति के खास मौकों का अहम हिस्सा बना हुआ है। देखिए, इस गाने को सुनकर उस फौजी के दर्द को समझा जा सकता है जो अपने देश की रक्षा के लिए अपने परिवार से दूर रहकर अपनी जान पर खेलता है। देखिए, हम लोग तो थोड़ी ही दूर निकल जाते हैं तो इतना दर्द महसूस करते हैं अपने परिवार से दूर कहीं जाते हैं, मगर याद रखिए, ये लोग जब जाते हैं, जो ये फौजी लोग होते हैं, जब अपने देश को छोड़कर बाहर जाते हैं, जंग में जाते हैं, तो उनको पता नहीं होता है, उनके परिवार को पता नहीं होता है कि ये बंदा वापस आएगा भी या नहीं। सो कैन यू इमेजिन, उस माँ की जो दर्द को समझिए, जो अपने बेटे को देश की रक्षा करने के लिए भेज देते हैं और उनको, उनके मन में ये होगा कि पता नहीं मैं अपने बच्चे को वापस देखूंगी या नहीं। और उस बीवी को सोचिए, उस बच्चों को के बारे में सोचिए जो अपने पिता को या माँ को भेजते हैं और फिर उन्हें पता नहीं होता है कि वो वापस आएंगी या नहीं। सो चलो ये गीत सुनते हैं एंड उम्मीद है कि आप उन सभी फौजियों के लिए, चाहे किसी भी देश से हो, जो अपने देश के लिए जंग लड़ रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे।

0: $0 delivery.
1: जी, जैसे मैं कह रही थी कि उनके बारे में सोचिए जो अपने बच्चों को, अपने घर वालों को इतना दूर भेजते हैं, तो कैसा होता होगा, उनके दिल में क्या बातें चल रही होगी ना, ये आप सोचिए।

0: सुबह से शाम तक
1: When I will dance, my dance shall speak for me.
0: शाम से रात्रि तक
1: Superb, superb, fabulous, outstanding.
2: नहीं ऐसे नहीं, खुल के बोलिए कैसा लगा लगा कैसा
0: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी आपकी पहचान
3: हिल मत चल
2: अरे बगैर हिल चल कैसे होगा
3: yeah.
2: Yeah.
3: Yeah.
2: Okay, soft.
3: Yeah, soft.
2: Yeah.
3: Up loud. Yeah.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो प्रसारणी 1701 AM पर मैं सताक्षी आज एक बार फिर से आपके साथ हूँ। और आप अपने वीकेंड्स को एंजॉय कर रहे हैं मैं जानती हूँ, और इन वीकेंड्स को चलिए और भी खास बनाते हैं क्योंकि आपके बहुत सारे मेल्स मेरे पास पहुंच चुके हैं। जी हाँ, हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी मेरा इनबॉक्स और रेडियो स्टेशन आपके मेल्स की यादों से भर चुका है। आपकी यादें, आपके किस्से और आपकी फरमाइशें, यही तो इस शो की जान है। तो चलिए धीरे धीरे करके ये सारे मेल्स पढ़े जाएंगे और आपकी फरमाइशों को लिया जाएगा। लेकिन अभी अगर आपने हमें नहीं लिखा है तो लिख भेजिए रेडियो प्रसारणी के फेसबुक पेज या फिर वेबसाइट पर अपनी फरमाइश। और चलिए हम शुरू करते हैं फरमाइशी गीतों का सिलसिला इस अगले ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रसारणी, सताक्षी को सुनते रहिए और सुनते रहिए फरमाइशी गीत।

फरमाइशी गीत आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ, और चलिए देखा जाए कि आज का पहला मेल किसका है। सो आज का पहला मेल है मेरे पास ब्रिस्बेन से रमेश श्रीवास्तव जी का, और आप लिखते हैं कि सताक्षी, मैं और मेरी पत्नी इस शो का कोई भी एपिसोड मिस नहीं करते हैं। आज हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है। मेरी पत्नी सुनीता को पुराने गाने बहुत पसंद हैं और मैं इस मेल के जरिए उसे बताना चाहता हूँ कि सालों बाद भी मेरे लिए उसकी अहमियत कम नहीं हुई है, इसलिए प्लीज मेरे लिए प्ले कर दीजिए ए मेरी जोहरा जबी। तुम्हें 25 साल हो या 50 साल हो रमेश जी, शादी और शादी का प्यार हमेशा लाजवाब रहता है, और आप दोनों को आपके आज इतने खूबसूरत दिन के लिए हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से ढेरों ढेर शुभकामनाएं, और आपके लिए जरूर प्ले होगा है मेरी जोहरा जबी। सुनिएगा और मेरे साथ सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन, आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीत।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स।

0: मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
0: बिल्कुल, ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स।

फरमाइशी गीत आप इंजॉय कर रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी 1701 एम पर, आपके साथ सदाक्षी है और मेरे साथ इस शो में हमारा मनोरंजन कर रहे हैं, हमें एंटरटेन कर रहे हैं और हमारे वीकेंड्स को खास बना रहे हैं कुछ बहुत ही प्यारे गाने। अगला लेटर लेने से पहले, अगले मेल की ओर बढ़ने से पहले एक और ट्रैक के साथ आपको आगे लेकर चलते हैं। इसे सुनते रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए रेडियो प्रिस्वानी 1701 एम पर फरमाइशी गीत।

0: यहाँ रेडियो प्रस्थानी पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीत और मेरे पास है अभी अगला मेल और ये मेल हमें मिला है संजीवनी का और आपने हमें लिखा है मेलबर्न से और आप लिखती हैं कि सताक्षी जब भी मैं और मेरे पति शाम की कॉफी पर साथ बैठते हैं तो रेडियो प्रस्थानी हमारी उस शाम को हमारे उस पल को खूबसूरत बना देता है। आज मौसम बहुत अच्छा लग रहा है और वीकेंड्स हैं तो हम आज फिर से एक बार सुकून से बैठे हुए हैं तो एक बहुत ही अच्छा गाना मुझे याद आ रहा है इस मौसम में अगर आप प्ले कर देंगी जो मैं और मेरे हस्बैंड कॉलेज के दिनों में गुनगुनाया करते थे कभी आना तू मेरी गली। आई यार ये गाना ना सच में यार अपने याद दिला दिया ये गाना तो हम भूल ही चुके थे ना लेकिन देखिए कितना खूबसूरत गाना है और इस गाने को तो अभी मुझे आपको सुनवाना ही सुनवाना है। सुनिए और मेरे साथ सुनते रहिए रेडियो प्रस्थानी आप सुन रहे हैं फरमाइशी।
1: Так, дин на дин.

0: गले है कभी आना तुम मेरे गले,
1: कभी आना तुम अपनी गली,
0: कभी आना तू मेरी गली।
2: क्वींसलैंड विच हर साल जंगला विच अग लगती है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰ
3: फरमाइशी गीत आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर, और आपके लिए आपकी फरमाइशों को लेकर आ गई है सताक्षी। बहुत ही प्यारे गाने हैं और ये गाने इसलिए खास हैं क्योंकि यार ये आपकी फरमाइशों से जुड़े हैं। वैसे हर इंसान चाहता है ना कि यार उसके नखरे उठाने वाला, उसकी फरमाइशें पूरी करने वाला कोई तो इस दुनिया में होना चाहिए। हाँ मैं ना, और हम आपकी फरमाइशों को पूरा करते रहेंगे। अगली फरमाइश की ओर बढ़ने से पहले अभी एक और ट्रैक मेरे साथ एंजॉय कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्वानी, यूं ही सुनते रहिए फरमाइशी।

इंडिया से मेरे पास है अगला मेल, इंडिया से मेरे पास है अगला मेल, और ये हमें लिखा है अमित वर्मा ने इंदौर से। अमित लिखते हैं कि हाय सताक्षी, मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ। लेट नाइट शिफ्ट के बाद जब घर लौटता हूँ तो दिल सुकून चाहता है और 90s के गाने मेरी थकान को मिटा देते हैं। मुझे मेरे कॉलेज के दिनों की याद दिलाते हुए आज एक गाना सुनने का बहुत मन हो रहा है, प्लीज उसे प्ले कर दीजिए। आशिकी फिल्म से कुमार सानू की आवाज में सुनवा दीजिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। हाँ, एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। और देखिए अमित भाई, जब लेट नाइट आप लौटते हैं तो दरवाजा खोलने के लिए भाई कोई होना चाहिए जिसे देखकर आपकी सारी थकान उतर जाए। और फिर जब ये गाना प्ले होगा, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, तो मजा आ जाएगा। फिलहाल अभी आपकी थकान को हम थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं और आपके लिए ये गाना हम प्ले जरूर करेंगे। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, लेकिन कहते हैं ना कि स्ट्रगल रंग जरूर लाते हैं, लेकिन देखिए वीकेंड्स पर स्ट्रगल की कोई बात नहीं होगी। तो चलिए आपके कॉलेज के दिनों की यादों को ताजा करते हैं अगले गीत के साथ हम भी, क्योंकि ये गाना हम सबकी यादों से जुड़ा हुआ है। इसको एंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी। आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीत।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: फरमाइशी गीत आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM पर। सो आइए आपको आगे लेकर चलते हैं भी एक और गाने के साथ। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM।

सो वेलकम बैक रीचू प्रस्वानी पर फरमाइशी गीतों में आप हैं सताक्षी के साथ। और अगला मेल थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि ये एक बेटी ने अपनी माँ के लिए भेजा है। जी हाँ, ये मेल किया है कनाडा से नेहा ने और आप लिखती हैं कि सताक्षी मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है। वाओ यार, मतलब कनाडा में भी हमारे फैंस हैं। थैंक यू सो मच यार। और आज उनका बर्थडे है। जब भी 90s के गाने प्ले होते हैं मम्मी अपनी पुरानी फोटो एल्बम निकाल कर बैठ जाती हैं। उनकी सबसे फेवरेट मूवी है साजन, तो प्लीज साजन फिल्म से प्ले कर दीजिए ना। तू शायर है मैं तेरी शायरी, तू शायर है मैं तेरी शायरी, साजन का एक बहुत ही प्यारा गाना है और हम आंटी जी के लिए जरूर प्ले करेंगे। और सबसे पहले तो आंटी जी आपको जन्मदिन की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। आपकी बेटी ने इतने प्यार से आपको ये सरप्राइज दिया है, आई होप कि आप लोग जरूर सुनेंगे इसे। और थैंक यू सो मच यार, आप मेरी आवाज और ये शोज मेरे इतने पसंद करती हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आपके लिए खासतौर से प्ले करती हूँ तू शायर है मैं तेरी शायरी। सुनिए इस ट्रैक को और एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया। हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन।

0: सो मेरे पास आ गया है अगला मेल, और ये मेल हमें मिल गया है ब्रिस्बेन से ही, और हमें लिखा है रोहन ने। रोहन का कहना है कि सताक्षी, बहुत कम वक्त हुआ है मुझे ब्रिस्बेन आए हुए, और मैं बहुत मिस कर रहा हूँ अपनी फैमिली को। जब भी अकेला होता हूँ तो बस फैमिली की यादों में खो जाता हूँ। यार बड़े अच्छे दिन थे वो, दोस्त, वो परिवार, मतलब सबके साथ ना दिन का पता नहीं चलता था। और अब तो छुट्टी ऐसा लगता है कि मेरे लिए सजा बन गई है, घर पे अकेले रुकने का बिल्कुल मन ही नहीं होता है। तो बस अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए मुझे एक ऐसा ट्रैक सुनवा दीजिए जिसमें ढेर सारी एनर्जी हो। रोहन, जब भी हम जगह चेंज करते हैं ना, खासकर जब हमसे सारे के सारे अपने दूर हो जाते हैं, तो लोनली फील होना तो बनता है। और कभी कभी ये चीजें जो हैं वो लाइफ में जरूरी हो जाती हैं, क्योंकि हम खुद जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो फिलहाल शायद आपके लिए यहाँ रहना सही है। और जहां तक बात है एनर्जी को बढ़ाने की, तो एनर्जी को बढ़ाने की जब बात होती है तो मुझे 90s में सिर्फ एक एक्टर याद आते हैं, गोविंदा। तो चलिए गोविंदा जी का एक ऐसा गाना आपके लिए प्ले करते हैं जो आपके मूड को एकदम फ्रेश कर देगा। सुनिए और मेरे साथ सुनते रहिए फरमाइशी गीत रेडियो प्रस्वानी 107.01 FM पर।
1: घड़ी

पास है अभी अगला मेल और ये हमें लिखा है वैंकूवर बीसी से इस वक्त के श्रीवास्तव जी ने, और आप लिखते हैं कि सताक्षी, मैं बेसिकली एक डॉक्टर हूँ और जब हॉस्पिटल की आपाधापी के बाद रात को घर लौटता हूँ तो गजलें दिल में कुछ ऐसे बैठ जाती हैं कि सुकून का जरिया बन जाती हैं। आज एक गजल मैं आपकी पसंद की सुनना चाहता हूँ प्लीज, क्योंकि आप सबको गाने सुनवाती हैं तो आपको जो गजल पसंद हो वो प्लीज मेरे लिए प्ले कर दीजिएगा, और ऐसी गजल जो सीधे दिल में उतर जाए। भाई आपने तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि गजलों की तो मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ, बस उम्मीद इतनी कर रही हूँ कि जो गजल मेरी फेवरेट है वो आपको अच्छी लगेगी। चलिए, वैसे आपने बात तो बिल्कुल ठीक कही है कि जब बहुत मन परेशान हो जाता है ना दिन भर, तो गजलें जो है वो सुकून के साथ ही बन जाती हैं। और मैं जानती हूँ कि आप दिन भर जब पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, कैसी उनकी तबीयत है, कैसा उनका ट्रीटमेंट रहता होगा, वो सारी चीजें बिल्कुल बर्डन सी बनकर आप जब घर लौटते हैं तो आपके साथ लौटती होंगी, तो ऐसे में सुकून तो बनता है। वैसे अगर आपको गजलें वाकई पसंद है तो हमारा शाम गजल का शो भी तो है, आप जरूर सुना करिए। तो चलिए अभी अपनी पसंद की एक गजल आपके लिए प्ले कर रही हूँ, इंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनते रहिए फरमाइशी गीत।

0: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.
1: It's time to complete your census. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare and transport. When you take part, you help make sure your language, culture and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorized by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
2: फरमाइशी गीत आप इंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। आपकी फरमाइशों के साथ हम आपको आगे लेकर चल रहे हैं कुछ बेहतरीन गानों और हमारी और आपकी बातों के साथ। तो ये बातें और इन बातों का सिलसिला जो है वो आगे भी जारी रहेगा। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रस्वानी 1701 AM।

इस्लामाबाद से अभी मेरे पास है निखत का मेल, और निखत ने लिखा है कि सताक्षी, रेडियो प्रिस्फानी पर फरमाइशी गीत ये मेरे लिए वीकेंड का सिर्फ शो नहीं है, मेरे लिए एक ऐसी मेडिसिन है जिसके साथ मैं बहुत रिलैक्स फील करती हूँ। और हमेशा फरमाइशें इतनी खास होती हैं कि कभी अपनी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आज मैं बेगम अख्तर जी की एक गजल सुनना चाहती हूँ, अगर आप सुनवा दें तो। बिल्कुल भाई निखत, हम आपके लिए बेगम अख्तर जी की गजल पेश करेंगे। और बेगम अख्तर जी की आवाज में भी एक ऐसा जादू था जिसके साथ जो है बड़ा सुकून मिल जाया करता था, तो इंजॉय कीजिए। आपने हमें गजल नहीं लिखी है तो हम अपनी तरफ से उनका एक बहुत ही खूबसूरत नगमा जो है वो आपके लिए प्ले कर रहे हैं। सुनते रहिए हमारे साथ फरमाइशी गीत, रेडियो प्रिस्फानी 107.01 FM।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: तो भाई अभी मेरे पास है इस शो का आज का आखिरी मेल और ये मेल मुझे लिखा है सौरभ ने और आपने मुझे लिख भेजा है अहमदाबाद से और आप लिखते हैं कि सताक्षी 90s के एल्बम सॉन्ग्स की बात हो और फाल्गुनी पाठक का जिक्र ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। आज मैं इस शो को शुरू से सुन रहा हूँ और 90s के खूबसूरत एल्बम्स का जिक्र है तो मुझे भी याद आया, पहले तो मैं सिर्फ गाने ही इंजॉय कर रहा था लेकिन फाल्गुनी पाठक जी का कोई गाना प्ले ना हो तो मजा नहीं आता, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो प्लीज उनका गाना जरूर प्ले कीजिएगा क्योंकि जब बचपन में नवरात्रि और टीवी पर याद पिया की आने लगी हम देखा करते थे तो वाकई वो यादें आज तक जहन में जिंदा हैं। तो प्लीज आज इस गाने को जरूर प्ले कीजिएगा। सौरभ जी आपने तो मतलब सच में आज आप लोगों ने मुझे पहुंचा दिया यादों में यार। हाँ तो याद पिया की आने लगी फाल्गुनी पाठक के, इस गाने के बिना वाकई शो पूरा नहीं लग रहा ना। एंजॉय कीजिए इसको, बिना कुछ कहे आपके लिए प्ले करूंगी और सुनते रहिए मेरे साथ फरमाइशी गीत रेडियो प्रसवानी पर। हाँ।

तो दोस्तों, ये थे आपके भेजे हुए वो मेल्स, वो यादें जो आज इस प्रोग्राम की शान बढ़ाने में हम सबके लिए बड़े यादगार बन गए। आई होप कि आपने आज के इस सफर को बहुत एंजॉय किया होगा, आपको बहुत मजा आया होगा। बस आपके प्यार और मोहब्बत को यूं ही हम पर बरसाते रहिए। मैं अब आज के सफर से इजाजत लेती हूँ और इस विश के साथ कि आने वाला हफ्ता आपके लिए बहुत जबरदस्त और बहुत ही बेहतरीन हो। अपने मेल्स हमें भेजते रहिए, अपनी फरमाइशों को हम तक पहुंचाते रहिए। हम मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते फरमाइशी गीतों में। नमस्कार।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपका रेडियो हमसफर। मेरा नाम है निलय। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी पर कारवाई गजल। आगाज हो चुका है। वाकई रिश्ते निभाने के लिए दिल से कोशिश करनी पड़ती है। दिल के समंदर में एहसासों को समझने के लिए गहराइयों में उतरना पड़ता है। तो चलिए आज इस गजलों की महफिल में कुछ रूठे ख्वाबों को मनाने की कोशिश करते हैं, कुछ छूटे रिश्तों को संवारने की कोशिश करते हैं। सुनते रहेगा कारवाई गजल। भाई आपका साथ नहीं होगा तो ये कारवां कैसे बनेगा? आपका साथ बहुत जरूरी है। तो अर्ज किया है कि अजब बात है, देखो क्या चाहते हैं। अजब बात है, देखो क्या चाहते हैं, जफा करके भी वो वफा चाहते हैं। जमाने में कोई भला काम कर ले, जमाने का हम तो भला चाहते हैं। कोई सरमदी गीत हमसे लिखा दे, कोई सरमदी गीत हमसे लिखा दे, यही तुझसे हम ऐ खुदा चाहते हैं। तेरे दर पे बैठे हैं धुनी रमाए, तेरे दर पे बैठे हैं धुनी रमाए, मोहब्बत भरी एक सदा चाहते हैं। है ए नूर हम तो मोहब्बत के बंदे, है ए नूर हम तो मोहब्बत के बंदे, नहीं हम किसी का बुरा चाहते हैं। तेरे दर पे बैठे हैं धुनी रमाए, मोहब्बत भरी एक सदा चाहते हैं।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं कारवाएं गजल। मैं हूं निल आपके साथ। जिंदगी जीने के लिए जरूरी है कि आप जिंदा रहें, जरूरी है कि आप हालात को महसूस करें, उस दर्द को महसूस करें जिस दर्द से कोई और गुजर रहा है, उस पल को जिएं जिस पल में आप हैं, और इसलिए जरूरी है कि आप जिंदा रहें। वाकई हर पल में कुछ ना कुछ जरूर होता है जिसे हम महसूस करते हैं, पर हम अपनी ही परेशानियों में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि हर वक्त जिंदगी से कहते हैं अभी नहीं जाने दे, हर ख्वाब से कहते हैं अभी नहीं यार जाने दे। तो जनाब, आज से अपनी खुशियों को अपना पता ठिकाना दे दीजिए और मुस्कुराइए, क्योंकि आपका रेडियो हम सफर निले है आपके साथ। अजब यकीन उस शख्स के गुमान में था, वो बात करते हुए भी नई उड़ान में था। हवा भरी हुई फिरती थी अब के साहिल पर, कुछ ऐसा हौसला कश्ती के बादबा में था। हमारे भीगे हुए पर नहीं खुले वरना, हमें बुलाता सितारा तो आसमान में था। उतर गया है रगोपय में जायका उसका, उतर गया है रगोपय में जायका उसका, अजीब शहद सा कल रात उस जबान में था।

अनगिन है जख्म तन पर अब तुमसे क्या छुपाना, कांटों का उस पे बिस्तर अब तुमसे क्या छुपाना। वेलकम बैक, निलय आपके साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर आप सुन रहे हैं कारवाए गजल। दिन ढल जाता है कई मसलों के साथ जूझते हुए, है ना। शाम ढलते ही लगता है कि उस हम सफर की तलाश की जाए जिसके साथ बैठकर दिन भर की बातें शेयर कर सकें, उसे वो छोटी से छोटी बात भी बता सकें जिसने आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी थी, या फिर उस हल्की सी तकरार की बात भी कह दें जो माथे पर शिकन ले आई थी। ऐसे वक्त पर हर शख्स चाहता है कि कोई बात सुनने वाला हो, कोई बात सुने, न कि उन बातों पर कोई सलाह मशवरा करे। आमतौर पर जो लोग साथ होते हैं वो तुरंत हम सही हैं या गलत इस पर तराजू लेकर बैठ जाते हैं। ये तुमने गलत किया यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। पता नहीं भाई, सुन लो हम जो कह रहे हैं, कभी तो हमें कहने दिया करो और तुम सुन भी लिया करो, क्योंकि कभी कभी दिल चाहता है कि बात सिर्फ सुनी जाए, वो सही है या गलत उसके तराजू में तोले बिना, बस सुनी जाए। क्यों होता है ना ऐसा आपके साथ भी कई बार? भाई मेरे साथ तो कई बार होता है, इसीलिए अपनी सारी बातें लेकर मैं हर हफ्ते आपसे मिलने चला आता हूँ इस कारवां में। मेरे हम सफर बने रहिए और सुनते रहिए कारवाएं गजल। ये सब्र की नसीहत अपने ही पास रखो, ये सब्र की नसीहत अपने ही पास रखो, पानी है सर से ऊपर अब तुमसे क्या छुपाना, हर बात कायदे की हमसे छुपा गया है, कहता रहा बराबर अब तुमसे क्या छुपाना।

अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। वेलकम बैक भाई, मैं तो आपको हमेशा याद करता रहता हूँ। मेरा नाम है निले और भाई आपके बगैर ये कारवां कभी पूरा ही नहीं हो सकता। कारवां गजल सुन रहे हैं आप, बेहतरीन नगमे और गजलें लेकर पेश हूं एक बार फिर से। तन्हाई में मैं अकेला नहीं रहता, मेरे ख्वाबों के साथ बातें करता रहता हूं। ये आप ही लोगों का जिक्र कर रहा हूं मैं, ऐसे ही होता है ना। उन अधूरे ख्वाबों के साथ जो कभी मेरे अपने थे, जो पूरे करने के लिए मैंने रात दिन एक कर दिया था। उन अधूरे ख्वाबों के साथ जो कभी मेरे अपने थे, जिन्हें पूरा करने के लिए मैंने रात दिन एक कर दिए थे। उन ख्वाबों के साथ बैठकर तसल्ली के साथ बातें करता हूं। वही ख्वाब हैं जो अब मेरे अपने रहे हैं। जो ख्वाब पूरे हो गए वो पंख लगाकर उड़ गए, पर जो अधूरे थे बस अब वही मेरे पास रह गए। कई बार उनसे बैठकर बातें करता हूं, गुनगुना लेता हूं अब उन गीतों को जो तेरे ख्याल में कभी लिखे थे। वो ख्याल मन ही मन दोहरा लेता हूं जो साथ में बीते थे। अब तू नहीं, तेरा सहारा भी नहीं, लेकिन वो अधूरे ख्वाब अब भी मेरे हैं। तन्हाई में वो अब भी मेरा साथ नहीं छोड़ते। तन्हाई में तन्हाई ने तन्हाई से जीने ना दिया। ऐसा ही होता है, लेकिन जब तन्हा ज्यादा रहते हैं तो तन्हाई से ही मोहब्बत हो जाती है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, सुनते रहिए कारवां गजल। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर निले और आपने ट्यून इन किया है रेडियो प्रिस्वानी। कीप लिसनिंग। जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज मरते रहे, रोज जीते रहे। जिंदगी भी हमें आजमाती रही और हम भी उसे आजमाते रहे। जख्म जब भी कोई जहन दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। हम भी गोया किसी सांस के तार हैं, चोट खाते रहे, गुनगुनाते रहे। कल कुछ ऐसा हुआ मैं बहुत थक गया, कल कुछ ऐसा हुआ मैं बहुत थक गया, इसलिए सुन के भी अनसुनी कर गया। कितनी यादों के भटके हुए कारवां दिल के जख्मों के दर खटखटाते रहे।

अपनी नजर से आज गिरा दीजिए मुझे, मेरी वफा की कुछ तो सजा दीजिए मुझे। यकतरफा फैसले में था इंसाफ कहाँ का, मेरा कसूर क्या था बता दीजिए मुझे। दो जिस्म एक जान है बीमार हैं दोनों, दो जिस्म एक जान है बीमार हैं दोनों, उसको शफा मिलेगी दुआ दीजिए मुझे। वेलकम बैक, मैं निलय हूं आपके साथ, आपका हम सफर रेडियो हम सफर। जहां प्यार देखो वहीं घर बनाना, ये दिल की बात है, दिल की इमारत है भाई, ऐसे बनती है दिल से, दिलासों को छू के, उम्मीदों से मिलके। लेकिन इतनी मोहलत कहां कि घुटनों से सर उठाकर फलक को देख सकें। वक्त बैठा हुआ है गर्दन पर, तोड़ता जा रहा है टुकड़ों में, और इसी डर से मैं रोज आईने में देखता हूं, रोज कुछ ना संजो कर रखने की कोशिश करता हूं, पर बदल जाता है रोज कुछ ना कुछ। ढूंढ नहीं पाता मैं खुद का ही अक्स उस आईने में, रोज जलता हूं उन अधूरे रिश्तों में, पलता हूं उन अधूरी सांसों में, मगर जिंदगी के दस्तूर को निभाता हूं, जिए जाता हूं मैं। सुनते रहिएगा कारवां गजल मेरे यानी नीले के साथ, गजलों का कारवां जारी रहेगा अगली पेशकश आपके लिए। उससे पहले मैं जा रहा हूं आऊंगा शायद ही लौट कर, मैं जा रहा हूं आऊंगा शायद ही लौट कर, ऐसे न बार बार सदा दीजिए मुझे, सोया रहा हूं चांद में गफलत की नींद में, सोया रहा हूं चांद में गफलत की नींद में, रुखसत का आया वक्त जगा दीजिए मुझे।

अजब टीस है उस मुलाकात की, न बैठे न उठे न कुछ बात की, बजाहिर न होठों से कुछ भी कहा, नजर ने नजर से मगर बात की। नया चांद देखा था जिस रात को, है ताजा अभी याद उस रात की। आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और लिखने को कहानी प्यार की स्याही नहीं आंखों वाला पानी चाहिए। दिल की कहानी प्यार का एहसास अशकों के बगैर अधूरा ही रहता है। कहानी को दिलों तक पहुंचाने के लिए दिल में उठे दर्द सी आंखों को अशकों से भिगो दे, ऐसा एक खूबसूरत एहसास चाहिए। तब छू ही लेता है हर अल्फाज जो दिल की गहराइयों से उभरता है। अश्क लफ्जों की ताकत बनकर कलम से कागज को एक नया आयाम प्रदान करते हैं। मोहब्बत में तो लिखिएगा जरूर, बहुत उम्दा लिख पाएंगे आप। जो महसूस करें, जिन भी लफ्जों का इस्तेमाल करें, कुछ लिख डालिए, और यकीन जानिए जब बरसों बाद आप इसे पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि मैंने लिखा था। इतनी खूबसूरत फीलिंग से गुजर रहे हैं इस वक्त आप। लिखिए अपनी फीलिंग्स को, और चाहे तो हमसे भी शेयर कर लीजिए हमारे फेसबुक पेज पर आकर। सुनते रहेगा कारवाई गजल नेले के साथ। वो जो दरमियां मेरे उनके हुई, बनी बात क्या क्या न उस बात की। वो जो दरमियां मेरे उनके हुई, बनी बात क्या क्या न उस बात की। किसी ने उनसे न पूछा, कहा कहानी बना ली मेरी बात की। हकीकत को मैंने हकीकत कहा, ये खामी रही अपनी औकात की। वो अपना ही किस्सा सुनाते रहे, तवज्जो न की कुछ मेरी बात की।

सभी को ये शिकायत है, शिकायत क्यों नहीं करते? हमें तुम ये बताओ, तुम मोहब्बत क्यों नहीं करते? हजारों झूठ से बेहतर है ख्वाहिश को भुला डालो, कहो तुम सच के सपनों से हिफाजत क्यों नहीं करते? ख्वातीन हजरात, आप सुन रहे हैं कारवाएं गजल, मैं हूं निले आपके साथ। कहीं तो कोई गिरह खुलनी है, कहीं तो कोई नई बात जहन में रहनी है। किसी एक डर से पीछा छूटेगा और कुछ नहीं तो किरदार तेरा निखरेगा। तो बस कोशिश से इश्क निभाता जा, मेहनत से वफा करता जा, मुश्किलों की ताकत बनता जा, खुद पर अपना यकीन बढ़ाता जा। जितनी आसानी से कह दिया उतना आसान नहीं है ये निभाना। बड़ी शिद्दत से मसलों को हल करना पड़ता है, खुद को तलाशना पड़ता है, तराशना पड़ता है, तब जाके अंदाज में असर पैदा होता है। जिंदगी तमाम हो जाती है कई बार कोशिश करते करते, खुद को तलाश करते करते। पर अगर कोशिश में सच्चाई है तो राह कितनी भी मुश्किल हो, मंजिल दूर नहीं है। सुनते रहेगा कारवाएं गजल रेडियो ब्रिस्वानी पर निले के साथ। कहां पर खो गए हैं हम नहीं मालूम खुद हमको, मगर तुमको भुलाने की हिमाकत क्यों नहीं करते? अदावत रोज होती है, मोहब्बत रोज मरती है। अदावत रोज होती है, मोहब्बत रोज मरती है। जहां वाले भी नफरत को ही आदत क्यों नहीं करते?

0: अजीब शख्स था, आंखों में ख्वाब छोड़ गया। वो मेरी मेज पे अपनी किताब छोड़ गया। नजर मिली तो अचानक झुका के वो नजरें मेरे सवाल के कितने जवाब छोड़ गया। आप सुन रहे हैं कारवाई गजल और मैं हूं आपका रेडियो हम सफर निलय आपके साथ। आपने कभी सोचा है कि दुनिया में न जाने कितनी तरह की भाषाएं हैं, बोलियां हैं, अंदाज हैं और हम सब एक दूसरे से जुदा जुदा हैं, एक जैसे नहीं है। लेकिन संगीत जो है ना, म्यूजिक, वो पूरी दुनिया को एक ही धागे में पिरोने की ताकत रखता है। वैसे देखा जाए तो इमोशंस को शब्दों में लिखा नहीं जा सकता, पर संवेदनाओं को संगीत में पिरोया जा सकता है, जज्बातों को संगीत के माध्यम से बयां किया जा सकता है और उसे समझने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं पड़ती है। बस सीने में दिल होना चाहिए और दिल में धड़कन होनी चाहिए जो एहसासों को समझ सके। गजलों के और बेहतरीन नगमों के इस म्यूजिकल कारवां को अपनी मंजिल के और थोड़ा करीब ले आते हैं इस अगली पेशकश के साथ। उसे पता था कि तनहा न रह सकूंगा मैं, उसे पता था कि तनहा न रह सकूंगा मैं, वो गुफ्तगू के लिए महताब छोड़ गया। गुमान हो मुझे उसका मेरे सरापे पर, ये क्या तिलिस्म है, कैसा सराब छोड़ गया।
1: क्या कहा?

अपनी बेताबी से उनको बेखबर समझे हैं हम, फिर भी कुछ है प्यार का उन पर असर समझे हैं हम। ये तड़पती चितवने, ये धड़कने दिल की उदास, ये तड़पती चितवने, ये धड़कने दिल की उदास, कोई समझे या नहीं समझे मगर समझे हैं हम। कहते हैं उम्र तो सिर्फ एक नंबर होती है, आप उतने जवान होते हैं जितना आप खुद को समझते हैं। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर आपकी उम्र से नंबर हटा दिया जाए और आपसे आपकी एज पूछी जाए, उम्र पूछी जाए, तो क्या जवाब देंगे आप? सोच में पड़ गए? इसका जवाब एकदम आसान है। अपनी आंखें बंद कीजिए और दिल पर हाथ रखिए, उन लम्हों को याद कीजिए जिन्हें आप फिर से जीना चाहते हैं, और बस उसी उम्र में जीने लग जाइए, और वही है आपकी उम्र। नंबर बढ़ते रहें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सपने हैं, जो ख्वाब हैं, जो दिल करना चाहता है, जिस उम्र में रहना चाहता है, वही है आपकी असली उम्र। सुनते रहिए गारवाई गजल अपने रेडियो सफर निलय के साथ। दो घड़ी रोना, दो घड़ी मस्ती के रंग, आपकी आंखों का इनको खेल भर समझे हैं हम। देखकर भी हमको होठों पर हंसी आई नहीं, आज कुछ बदली हुई है वो नजर समझे हैं हम। तोड़ ले जाएगा कोई तुझको दम भर में गुलाब, प्यार के ये रंग होंगे बेअसर समझे हैं हम।

वेलकम बैक, मैं हूँ आपका रेडियो हम सफर निलय और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ रेडियो ब्रिस्वानी पर। आप सुन रहे हैं कारवाएं गजल। कभी मोहब्बत कीजिएगा तो ये शर्त रखिएगा कि सिवा मोहब्बत के कोई शर्त ना हो। ये बात बिल्कुल सही है, पर सच कहूं तो वो मोहब्बत नहीं जिसमें शिकायत ना हो। हम सभी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जहां प्यार है वहीं शिकायत की गुंजाइश रहती है। वैसे देखा जाए तो जिन्हें हम पसंद करते हैं उनके नखरे उठाने भी तो अच्छा लगता है ना भाई। जो प्यार करते हैं वो जानते हैं, अति मत कीजिए, ज्यादा नखरे मत कीजिए, वरना फिर वो बर्डन लगने लग जाता है, फिर उसमें डिस्ट्रैक्शन आ जाता, मतलब मजा नहीं आता, जिंदगी बोझ लगने लग जाती है। लेकिन थोड़े बहुत नाज नखरे अगर आप उठाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर जब कुछ बातें उम्मीदों को भी नागवार गुजरती हैं और दिल टूट जाता है तो यहां पर एक बात कहने को दिल करता है कि आज किसी ने दिल तोड़ा तो हमको जैसे ख्याल आया जिसका दिल हमने तोड़ा था वो जाने कैसा होगा। इसीलिए कहते हैं किसी का दिल मत तोड़िए। कार्मिक थ्योरी मालूम है आपको, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, अभी नहीं तो कुछ देर बाद इसी जन्म में कभी ना कभी वो कर्म आपके सामने आएंगे जरूर। आप फिलहाल मेरे साथ रहेगा, मैं भी आपके सामने आऊंगा बहुत जल्द इन नगमों और गीतों के बाद। आप सुन रहे हैं कारवाएं गजल आपके अपने रेडियो हम सफर निलय के साथ।

सौदा हमारा कभी बाजार तक नहीं पहुंचा, इश्क था जो कभी इजहार तक नहीं पहुंचा। यूं तो गुफ्तगू हुई उनसे मेरी, सिलसिला ये कभी प्यार तक नहीं पहुंचा। जाने कैसे वाकिफ हो गया तमाम शहर, दास्तान इश्क वैसी अखबार तक नहीं पहुंचा। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी और मैं हूं आपका रेडियो हम सफर निलय, और आप और मैं एक ही सफर के हम सफर हैं जिसका नाम है कारवाएं गजल। आज मैंने अपना फिर सौदा किया और फिर मैंने दूर से देखा किया कि हो गई दिल को कुछ उम्मीद सी, खैर तुमने जो किया अच्छा किया। वैसे देखा जाए तो हर शख्स अपनी खुद की नजर में आम तौर पर सही ही होता है, उसकी हर बात का उसके पास कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन होता है, लॉजिक होता है, क्या वजह थी जिसके कारण उसने ऐसा किया, ये कदम उठाए। शर्तें एक दूसरे की मंजूर थी यूं तो, शर्तें एक दूसरे की मंजूर थी यूं तो, पर मसौदा कभी करार तक नहीं पहुंचा। गहराई दोस्ती की हम नापते भी कैसे, रिश्ता हमारा कभी तकरार तक नहीं पहुंचा।

उसकी आंखों में आज भी काजल फैल रहा है। मैं भी मुड़ के जाते हुए देख रहा हूँ। अब मेरा भी जाने का वक्त हो रहा है और इसी उम्मीद के साथ जा रहा हूँ कि जिंदगी की राह में आपका और मेरा साथ बना रहेगा। जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। आपकी और मेरी मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक इंतजार कीजिए, मैं भी इंतजार करूंगा। इस इंतजार को बरकरार रखते हैं, फासलों का एहसास भी दिल में आने मत दीजिएगा। जाते जाते बस ये कहना चाहूंगा कि क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। सुनते रहिएगा रेडियो ब्रिजवानी, अभी इजाजत दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्कार, खुदा हाफिज़।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

पर सो पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त ऐ दोस्त ऐ दोस्त।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
7: पे। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

पहले था कबूतर अब है ट्विटर, पहले थी बुक अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम अब है इंस्टाग्राम, पहले थी जादू की जापी अब है वीडियो कॉल पे पप्पी। यही सोचकर पिछला और अगला

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके ऐसी तुहाडे कोल आ रहे हैं।
1: द लेजेंड हरभजन मान लाइव इन क्रिस्टन
2: सैटरडे 15 अगस्त 6:30 PM
0: मिलते हैं जी ब्रिस्बेन विच
2: एट ब्रिस्बेन सेंट्रल ऑडिटोरियम माउंट क्रवाट टिकट्स एट प्रीमियर टिकट्स।

जीवन अमूल्य है। इस जीवन में हमें जो कुछ मिला है वो सब अमूल्य है, और वो सब हमें प्राप्त हुआ है उस ऊपर वाले की कृपा और उसकी रहमत से। उसी रहमत को धन्यवाद देने के लिए, उसका शुक्रिया कहने के लिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड देने के लिए अपने जीवन आधार के सफर में आज हम और आप फिर से एक साथ आ गए हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ सताक्षी आज एक बार फिर से। और जीवन एक ऐसा भंवर है जिसे पार करने के लिए एक बेस की, एक आधार की बहुत जरूरत है, और वो हमें मिलता है तब जब हम अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं, अपने ईश्वर को प्राप्त करना शुरू करते हैं और उसकी ओर बढ़ना शुरू करते हैं, हम मनुष्यता को प्राप्त करते हैं। आइए आज ऐसे ही एक सफर पे फिर से अपने जीवन के आधार को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, जीवन आधार में रेडियो ब्रह्मवाणी 1701 एफएम पर सताक्षी के साथ। और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए मेरे साथ।

जीवन आधार आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 पर और आपके साथ इस सफर में सताक्षी है। धैर्य यानी कि पेशेंस सीखा कई बार है लेकिन समझ हम और आप नहीं पाते हैं, लेकिन धैर्य जो इंसान रखता है, जो इंसान पेशेंस रखता है, वही इंसान जीवन में तरक्की कर पाता है, वही इंसान जीवन में वो सब कुछ हासिल कर पाता है, पा पाता है जो वो पा सकता है, और वो भी अपनी इच्छा के अनुसार। अगर आप भी अपने मन मुताबिक चीजें पाना चाहते हैं तो धैर्य रखिए। आज बेशक आपके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन अगर धैर्य और मेहनत आप रखेंगे, यानी कर्म अपने अच्छे रखेंगे और पेशेंस रखेंगे, ऊपर वाले पर भरोसा रखेंगे, तो निश्चित तौर से आज ना सही लेकिन आप जीवन में वो सब हासिल कर पाएंगे जो असल में आप डिजर्व करते हैं और आप पाना चाहते हैं। आइए इसी बात पर एक और गीत को यहाँ पर सुनते हैं। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

सुबह के कुछ अमूल्य विचार जीवन आधार में इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर। और इन विचारों में आपके साथ सताक्षी भी अपने कुछ विचार घोल रही है और इस सफर को और भी खूबसूरत बना रही है। सुनते रहिए जीवन आधार और यूं ही रहिए मेरे साथ।

अक्सर हम डर जाते हैं जब लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं, अक्सर हम घबरा जाते हैं, हमें लगता है कि अब कैसे ही हम इस जीवन में आगे बढ़ेंगे या हम कैसे कुछ भी जिंदगी में कर पाएंगे। तो देखिए, जिंदगी में घबराइए नहीं, डरिए नहीं, क्योंकि आपके साथ वो खड़ा है जो इस दुनिया में सबसे बड़ा है। याद है ना कि कैसे भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ खड़े हो गए थे और अपनी पूरी सेना को भी कौरवों को दे दिया था, उसके बाद भी जीत पांडवों की हुई। इसलिए जब आपके साथ वो ऊपर वाला खड़ा है तो फिर डर भय किस बात का है। आप जीवन में सही कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए और बाकी सब कुछ उस पर छोड़ दीजिए। आइए इन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं जीवन के आधार को, यानी कुछ ऐसी बातों को जो आपकी सुबह को भी खास बना रही हैं और सुबह में ऐसा रस घोल रही हैं जो मिठास का रस है, प्रभु भक्ति का रस है, ईश्वर की प्राप्ति का रस है और उस ऊपर वाले पर विश्वास का रस है। इसी रस के साथ, इसी भक्ति रस के साथ आगे बढ़ेंगे। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

अक्सर लोग आपसे ये उम्मीद करते हैं कि उनकी हर बात पर आप रिएक्ट करें, श्रोताओं हर बात पर आप बोलें। अक्सर लोग आपको उकसाते भी बहुत हैं, बहुत परेशान करते हैं कि आप बोलें कोई बात हो और फिर लोगों के आगे तमाशा बने। लेकिन ऐसी जगह पर मौन धारण कर लेना, मौन हो जाना, शांत हो जाना, इससे अच्छा कोई साधन नहीं है। लोगों के तीखे शब्द, तीखे बाण आपको लगते जरूर हैं, लेकिन बस इतनी बात समझने की जरूरत है कि वो आपको इसलिए उकसा रहे हैं ताकि आप पलटकर वार करें, आप अपने शब्दों का वार करें और फिर वो मौन हो जाएं और आप चिल्लाते रहें और वो उसका मजा लें। इसलिए ईश्वर पर कहते हैं ना, कभी कभी चीजें छोड़ देनी चाहिए, और मौन धारण करना ऐसे लोगों के लिए खासकर सबसे बड़ा सबक होता है। आइए इसी सबक के नाम ये अगला गीत सुनते हैं, और सुनते रहिए जीवन आधार आपके साथ।

कटाक्षी के साथ जीवन को समझने की एक कोशिश आज एक नई सुबह हम और आप मिलकर कर रहे हैं, फिर से जीवन आधार के खास सफर में। इसी सफर में आगे बढ़ेंगे अभी एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए कटाक्षी के साथ।

चुंबक लोहे प्रीति है लोहे लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। रेडियो प्रसानी 1701 एम पर जीवन आधार के सफर में श्रोतागण आप हैं सताक्षी के साथ। चुंबक को देखा है ना, मैग्नेट आयरन से उसकी अजब सी मोहब्बत है, ऐसे चिपकता है उससे कि लोहे को भी उठा लेता है। इसी तरह से हमारे शब्द भी हैं। कितना ही कठोर इंसान हो, कितना ही पत्थर दिल इंसान हो, अगर आप उससे मिठास से बोलते हैं, अगर आप उससे प्यार से बोलते हैं, तो आप उसे अपना मीत बना लेते हैं। हमारे शब्दों में वो ताकत है ना कि हम किसी को जान से मार भी सकते हैं और किसी को काल के ग्रास से छुड़ा भी सकते हैं, किसी को मरने से बचा भी सकते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए, प्यारा बोलिए, ताकि लोग ऐसे जुड़ जाएं जैसे लोहा मैग्नेट से जुड़ जाता है, चुंबक से जुड़ जाता है। आइए इसी बात पर, कबीरदास जी की इसी बात पर आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार, आपके साथ है सताक्षी।

श्रोताओं, ये था आज एक और जीवन की आधार का हमारा और आपका साथ जीवन आधार, जिसमें आप सताक्षी के साथ थे। एक ऐसे ही सफर पर कल फिर से आपके साथ चलूंगी, आपके साथ कुछ अनुभव अपने साझा करूंगी और कुछ मॉर्निंग थॉट्स ऐसे आपके लिए लेकर आऊंगी जो आपकी सुबह को और भी खूबसूरत बनाएंगे और ईश्वरीय शक्ति के साथ आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के सफर से अब लेते हैं इजाजत। नमस्कार।

मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे जानी जैन, और आज का मंडे जी हम शुरू करेंगे एक फ्रेश स्माइल, पॉजिटिव एनर्जी और थोड़ी सी मस्ती के साथ। चाहे आप जी ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, स्कूल रन कर रहे हैं, ट्रैफिक में हैं, या आप बस घर पर अपनी मॉर्निंग कॉफी एंजॉय कर रहे हैं, ब्रिस्वान इज राइट हियर विद यू। और याद रखिए दोस्तों, मंडे को ना बोरिंग बनाने की जरूरत नहीं है, मंडे को अपना बनाने की जरूरत है। सो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, कॉफी का एक सिप लीजिए, और चाहे कुछ भी हो जाए म्यूजिक को जरूर सुनते रहिएगा। जी हाँ, तो और चलिए फिर शुरू करते हैं आज का रेडियो में शो जो चल रहा है चांदनी का सफर, एक प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रसवानी।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ब्रिस्बेन और क्वींसलैंड की इम्पोर्टेंट अपडेट्स की। तो सबसे पहले अगर क्वींसलैंड की बात करें दोस्तों, तो क्वींसलैंड स्विमिंग चैंपियंस में यंग स्विमर्स ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। 15 ईयर्स ओल्ड ब्राइस क्रॉस ने भी 50 मीटर्स बैक स्ट्रोक में अपना ऑस्ट्रेलियन रिकॉर्ड इम्प्रूव करते हुए 24.16 सेकंड का टाइम जो है वो क्लॉक किया। उन्होंने 100 मीटर बैक स्ट्रोक में भी क्वींसलैंड रिकॉर्ड बनाया है। और एक और यंग सेंसेशन जो है वो 15 इयर्स ओल्ड कोआ स्टॉट्स जो है, उन्होंने भी मल्टीपल क्वींसलैंड रिकॉर्ड्स तोड़कर ना सबका अटेंशन ग्रैब किया है। दोस्तों फ्यूचर ओलंपिक्स के लिए क्वींसलैंड से ना टैलेंट की एक स्ट्रॉन्ग जनरेशन एमर्ज होती नजर आ रही है। तो एक बिग शाउट आउट टू ऑल दोज यंग एथलीट्स, ड्रीम बिग, ट्रेन हार्ड एंड कीप गोइंग। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

हाँ जी, तो वैसे ब्रिस्बेन मंडे मॉर्निंग का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अलार्म क्लॉक, ट्रैफिक या फिर बेड से उठने का मन ही नहीं करना, है ना? तो आज का क्वेश्चन है दोस्तों, आपके लिए परफेक्ट मंडे मॉर्निंग क्या है? कॉफी के साथ, म्यूजिक के साथ, मॉर्निंग वॉक के साथ, या फिर बस मुझे मतलब मंडे को ना कोई डिस्टर्ब ना करे। तो आप जो भी कर रहे हैं ब्रिस्वानी के साथ कनेक्टेड रहिए और अपना बात जो है, दिल की बात जो है, जरूर बताएं। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

0: हाँ जी, तो और अब थोड़ा सा भी एंटरटेनमेंट का तड़का तो लगना जरूरी है। ब्रिस्बेन रिसेंटली विटनेस्ड अ मेजर लाइव म्यूजिक मूवमेंट विद मैसिव अटैक परफॉर्मिंग एट द ब्रिस्बेन एंटरटेनमेंट सेंटर। दोस्तों अब अगस्त के अगर हम शो की बात करें तो शो को लेकर ना रिव्यूज में उनका पावरफुल विजुअल्स और क्लासिक ट्रैक्स की काफी बात हुई है। परफॉर्मेंस में दोस्तों टियर ड्रॉप, अनफिनिश्ड सिंपथी और राइजिंग सन जैसे फेवरेट्स भी हाईलाइट रहे हैं। और अब म्यूजिक लवर्स की बात करिए तो उनके लिए भाई एक और एक्साइटिंग अपडेट है। कैनेडियन सिंगर डैनियल कैसर अपना 2026 ऑस्ट्रेलिया टूर के ब्रिस्बेन स्टॉप के साथ आ रहे हैं भाई। अब ऑस्ट्रेलिया लेग नवंबर में स्टार्ट होगा और ब्रिस्बेन भी टूर का पार्ट है। सो ब्रिस्बेन म्यूजिक लवर्स, लुक लाइक द कॉन्सर्ट कैलेंडर इज गेटिंग हॉटर। जी हाँ, तो आइए इसी के साथ हम सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्वानी।
1: हर शीशे के दिल में एक तस्वीर है, एक शीशा दिल हमारे सीने में भी है जो हर दम इस मोहनी सूरत को छुपाए रखता है।
2: अच्छा, आगे बढ़िए।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में। वैसे दोस्तों, बैठे बैठे एक और चीज याद आई मुझे। कभी कभी ना हम अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। किसी का करियर आगे है, किसी का बिजनेस ग्रो कर रहा है, किसी की फैमिली लाइफ परफेक्ट लगती है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, आप किसी और की रेस में नहीं है। आपकी जर्नी ना आपकी है, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है। तो आज मंडे को एक छोटा सा भी प्रॉमिस कीजिए, मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, और बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ ना आगे बढ़ते रहिए। फिर देखिए, लाइफ का हर एक मोमेंट ना आप एंजॉय जरूर करेंगे। जी हाँ, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी। मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे जानी जैन, और आप सभी सुन रहे हैं जाने का सफर। तो अगले ट्रैक को जरूर एंजॉय कीजिए।

ऑल राइट ब्रिस्बेन, अब लेते हैं एक क्विक फुटबॉल अपडेट। ऑस्ट्रेलिया कप में ब्रिस्बेन रॉर का सामना हुआ सिडनी फुटबॉल क्लब से और इस मैच में दोस्तों सिडनी फुटबॉल क्लब ने ब्रिस्बेन रॉर को 4-2 से हरा दिया। ब्रिस्बेन रॉर ने सेकेंड हाफ में कमबैक की कोशिश जरूर की लेकिन सिडनी एफसी ने मैच के एंड में एक और गोल करके अपनी विक्ट्री कंफर्म कर दी। इस जीत के साथ सिडनी एफसी ने ऑस्ट्रेलिया कप के क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह बना ली है। ब्रिस्बेन फैंस के लिए भाई रिजल्ट थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा लेकिन ऑस्ट्रेलिया कप का एक्साइटमेंट अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। फुटबॉल फैंस स्टे ट्यून्ड फॉर मोर स्पोर्ट्स अपडेट राइट हियर ऑन ब्रिस्वानी। तो आइए इसके साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्बानी में। सो ब्रिस्बन, मंडे मॉर्निंग का मतलब है न्यू वीक, न्यू प्लान्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज। अगर दोस्तों लास्ट वीक ना कुछ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, सो फॉरगेट इट। आज एक फ्रेश पेज है। सो क्या करना है, जो काम पोस्टपोन किया था ना वो स्टार्ट कर लीजिए। जिस पर्सन को कॉल करना था ना, कॉल नहीं कर पाए थे, तो आज कर लीजिए। जिस ड्रीम को बाद में कहा था, उसके लिए एक स्मॉल स्टेप आज लीजिए। बिकॉज कहते हैं ना, वन स्मॉल स्टेप टुडे कैन बिकम अ कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ टुमारो। क्यों जी, सही कहा ना। तो ऐसा जरूर कीजिए, मन को भी खुशी शांति जरूर मिलेगी। तो आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्बानी।

वेलकम है जी, रेडियो ब्रिस्वानी में आप सभी सुन रही थी चांदनी का सफर रेडियो ब्रिस्वानी में। और आशा करती हूँ ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा, जहाँ पर आप सभी ने न्यूज़ अपडेट जानी, एंटरटेनमेंट गॉसिप जानी, बहुत सारी बातें, ये थॉट्स हम सभी ने बात की है चांदनी के सफर में। एंड आई होप कि आपको ये शो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही सुनने के लिए आप सभी मंडे टू फ्राइडे ज़रूर सुबह 6 AM सुना कीजिए चांदनी का सफर, आपकी अपनी दोस्त आरजे चांदनी जैन के साथ रेडियो ब्रिस्वानी में। सो अब क्या करना है, मैं लेती हूँ आपसे थोड़ी दिन के लिए इजाजत, यानी कि कल तक के लिए वही तैयारी करती हूँ, फिर कल आप सभी के बीच फिर हाजिर होंगी नया शो में नई बातें अपडेट्स लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, कीप लिसनिंग, बिकॉज ब्रिस्वानी के साथ भाई हर मॉर्निंग ना थोड़ी और ब्यूटीफुल है। सो हैव अ फैंटास्टिक मंडे ब्रिस्बेन, टेक केयर, बाय बाय।

नमस्कार, मैं सिताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। हाइपरसोनिक हथियारों की रेस में अमेरिका की बड़ी छलांग, हैट्स लॉन्चर से मिसाइल का किया सफल टेस्ट। अमेरिकी आर्मी ने हैवी आर्टिलरी टेस्ट सिस्टम का इस्तेमाल कर अपना पहला लाइव फायर हाइपरसोनिक टेस्ट किया है। ये लॉन्चर असल में स्ट्रेटेजिक लॉन्ग रेंज कैनन प्रोग्राम के लिए बना था, जिसे 2022 में फंडिंग बंद होने के बाद बंद कर दिया गया था। यूएस आर्मी ने यह ट्रायल 30 जुलाई को एरिजोना के यूमा प्रोविंग ग्राउंड में किया था। YPG आर्मी की सबसे बड़ी टेस्टिंग फैसिलिटी है और 8.3 लाख एकड़ में ये फैली है। सऊदी की जगजान अरामको रिफाइनरी पर बड़ा हमला, यमन के हूती विद्रोहियों ने ली ड्रोन स्ट्राइक की जिम्मेदारी। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के लाल सागर तट पर स्थित एक प्रमुख तेल ठिकाने को निशाना बनाया है। हूती सैन्य प्रवक्ता याहा सारी ने दावा किया कि उनके लड़ाके जजान स्थित सऊदी अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से बेहद सटीक हमला करने में कामयाब रहे। याहा सारी ने बताया कि ये कार्यवाही सऊदी अरब द्वारा उत्तर पश्चिम यमन में किए गए ड्रोन हमले के जवाब में की गई है। सिडनी एयरपोर्ट पर आपस में टकराने से बाल बाल बचे दो विमान, एक क्रू मेंबर घायल। ऑस्ट्रेलिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट पर दो यात्री विमानों के बीच टक्कर होते होते बच गई। सुरक्षा अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। दिन में सूर्य ग्रहण, रात में गिरेंगे उल्कापिंड। खगोलीय इतिहास के लिए ऐतिहासिक होगा 12 अगस्त। 24 घंटे में होंगी 3 बड़ी घटनाएं। 12 अगस्त 2026 की तारीख दुनिया भर के खगोल विज्ञान के शौकीनों के लिए बेहद खास होने जा रही है। इस एक दिन 24 घंटे के भीतर 3 बड़ी आसमानी घटनाएं एक साथ होंगी। सुबह सूरज उगने से ठीक पहले 6 ग्रहों की कतार दिखेगी। दिन में पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा और रात में टूटे हुए तारों यानी पर्सिड उल्कापिंडों की आतिशबाजी होगी। खगोलविदों का कहना है कि इन तीनों घटनाओं का एक ही तारीख पर होना एक बहुत ही दुर्लभ संयोग है। कसाई की घटिया खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्यवाही जारी, अब VKC नट्स का लाइसेंस किया निलंबित। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने VKC नट्स प्राइवेट लिमिटेड और छेड़ा स्पेशलिस्ट फूड प्राइवेट लिमिटेड के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। स्वच्छता और कीड़ों की रोकथाम से जुड़े नियमों के गंभीर उल्लंघन के कारण ये कार्यवाही की गई है। हम घर पर हैं और अपना किला बचाएंगे। वर्ल्ड कप 2027 से पहले कगिसो रबाड़ा ने विरोधी टीमों को दी चेतावनी। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कसिको रबाड़ा का मानना है कि अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में जब उनकी टीम घरेलू मैदान पर खेलेगी तो उन पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं होगा। साउथ अफ्रीका 2027 में जिम्बाब्वे और नामीबिया के साथ मिलकर वनडे वर्ल्ड कप की सह मेजबानी करेगा। रबाड़ा इस टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनका आत्मविश्वास साउथ अफ्रीका की उस टीम से बढ़ा है जिसने हाल के वर्षों में सभी फॉर्मेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: जितना सोनिया लोग वहां पर है, ये गाना आप सभी के लिए रहा और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग सुन रहे हैं, दूर दूर से सुन रहे हैं, क्या बात है। अरे कभी तो क्या
1: दूरिया
0: नजदीक, कभी तो क्या गाना बोला, कभी तो नजर मिलाओ कभी तो खत भेजो हमारे पास जी हाँ। अच्छा लगेगा इफ यू कैन डू दैट, इट विल बी गुड। बताइए आपके यहाँ से व्हेयर यू आर वहां पर क्या हो रहा है, वेदर कैसे है अभी यूरोप और उधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साइड बहुत ज्यादा गर्मी है और अब आहिस्ता आहिस्ता वेदर चेंज होगा।
1: इट्स चेंजिंग यह।
0: आई थिंक यू गाइस विल गेट अ वेरी सीवियर विंटर टू। It's going to happen
1: you
0: for
1: know,
0: a while.
1: You know, we didn't have such a bad winter, if you think about it. It wasn't so, like, freezing cold.
0: Well, you were
1: cold.
0: Wrapped up. How do you know? I was out in the open country. It was
1: oh,
0: cold.
1: Oh, God, yeah,
0: come
1: right.
0: On.
1: I wasn't rugged was up. I just probably had two layers on. And, you know, this...
0: Two layers is rugging up.
1: No, no, thin layers. What I'm saying is, like, you know how some winters has been so cold, you can feel your lips, like the wind burn and, you know... You getting a cold. This, I mean, touch wood, I've kind of missed all that. But then, before I speak too soon, the echo winds are here now. Right?
0: I know.
1: Now the windy season starts.
0: Why did they have it at this time? Because so many people get sick with all
1: sick.
0: The pollen in the air.
1: Well, all going to the
0: love
1: echo.
0: Is in the air.
1: Pollen is in the air.
0: Well, you know something I was going to say. Oh, my brother used to say. Mera bhai hamesha kehta tha, yaar, Australia ke jo thand hai na, ye sara bone mein jata hai. Haddi ke andar
1: pehnta
0: hota hai.
1: Yeah.
0: You know?
1: Yeah.
0: And the bone pain is very bad pain. You know that? Yeah. So anyway, leave the pain aside. And wo to hamara saathi hai. Hai ki nahi?
1: Yep.
0: कभी अच्छाई कभी बुराई, वैसे हमारे हेल्थ भी है, कभी हेल्थ अच्छा होता कभी हेल्थ नहीं अच्छा होता है कि नहीं। सो या सो वी स्टिल हैव टू सोल्जर ऑन, आगे बढ़ना है, बैठ गए तो फिर गए काम से भाई, है कि नहीं, चलते रहो,
1: चलती
0: तुझे कहीं। चलना पड़ेगा, तुझे चलना पड़ेगा। गाना क्यों ऐसे ऐसे गाना जा रहा
1: है दिमाग में?
0: ओके
1: But seeing that the echo winds are here, this came to my mind.

0: मैंने शनिवार को वादा किया था कि मैं आऊंगा रविवार को।
1: हाँ,
0: मैं आया था दोस्तों, लेकिन मेरा जो टू पुट इट प्लेनली somebody had locked on and would not allow me to come on. So anyway, this has been taken care of. And I'll be there. Tiger will be back.
1: Tiger abhi zinda hai.
0: Zinda hai abhi Tiger. Ji haan, abhi gaya nahi hu. Oh my God.
1: So you say, jab tak hai jaan.
0: Jab tak hai jaan. Okay.
1: That's it. So that's your vada.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Achha, chaliye, kyun nahi chalte ek long drive par?
1: एक लॉन्ग ड्राइव पे,
0: ओके, चलो सब साथ हम चलते हैं दोस्तों लॉन्ग ड्राइव पर। ओके, रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान, भूलना मत। इस कार्यक्रम के बाद में सताक्षी के साथ हो जाएंगे और फिर 11 बजे से आप किसके साथ, संदेश के साथ, और 3 बजे से निव्या के साथ। तो कार्यक्रम जरूर सुनिए और चलते हैं।

0: दिल है कि मानता नहीं, दिल को काबू में रखना एक काम है दोस्तों। बट एनीवे यही पर तो सब कुछ होता है।
1: कुछ कुछ तो होता है।
0: दैट्स अ नाइस सॉन्ग।
1: आई एम गोना प्ले दैट नेक्स्ट।
0: कुछ होता है। ओह या प्लीज या।

0: एल सिलसिला है प्यार का, अभी आपने सुना दोस्तों, रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान, और नंबर है 04300031701 या 3279-1701. ओके
1: ओके व्हाट
0: ओके नथिंग, आई वाज जस्ट थिंकिंग आई शुड, खैर कोई बात नहीं. Yeah, Sataakshi will be after this program, right?
1: Yes, it happens.
0: Yeah, today is Monday.
1: Yep.
0: Okay.
1: All right.

और हाँ दोस्तों, कुछ तो हुआ है। देखिए दोस्तों, कभी कभी हम जिंदगी के बड़े दर्द का बहुत बड़ा सलूशन ढूंढते रहते हैं, लेकिन सलूशन एक छोटी सी बदलाव में छुपा होता है। कभी मैट्रेस बदलने में ठीक है, कभी रूटीन बदलने में, और कभी अपनी सोच बदलने में। इसीलिए अगर जिंदगी अनकंफर्टेबल लग रही हो तो तुरंत जिंदगी को बुरा मत कहिए, शायद सिर्फ उसकी सेटिंग चेंज करने की जरूरत है। ओके, तो देखिए दोस्तों, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हर नई सुबह हमें कुछ बेहतर करने के एक और मौका देती है। ठीक है, तो आज आप जरूर मुस्कुराएं और किसी और को भी हंसाएं। ठीक है, और मैट्रेस भी आप हो सके मैट्रेस बदले, अगर आपका बैग में बहुत पेन है। एंड डू लेट अस नो, प्लीज लेट मी नो वेदर इट हेल्प यू और नॉट। ठीक है, ओके।

0: फिर भी दिल तो पागल है. ब्लेम एवरीथिंग ऑन द दिल. कुछ ना काम बने तो भगवान को याद कर लो ना. वो हम ह्यूमन बींग्स है, क्या करेंगे. तो दोस्तों बस कुछ 8 मिनट रह गए हैं इस कार्यक्रम में. और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे.
1: कहाँ?
0: जहाँ कोई ना हो. अच्छा तो हम चलते हैं.
1: यस.
0: तो बोलो फिर कब मिलोगी. ओह माय गॉड. चलो दोस्तों, हंसना खेलना बहुत जरूरी है दुनिया में.
1: ऑलराइटी. व्हाट वी गॉट? मेबी लेस देन 10 मिनट्स.
2: तुझे देख

सुबह के एक और खास अंदाज और ढेर सारे प्यार के साथ मैं सताक्षी आपको कहती हूँ गुड मॉर्निंग। रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर आप हैं मेरे साथ आपके अपने गुड मॉर्निंग और ब्रेकफास्ट वाले शो इट हैपेंस में। दोस्तों आज फिर से हम जिंदगी से जुड़ने वाले हैं, बोल जने जो मेरी तरह आपकी जिंदगी का भी हिस्सा है, आज हम और आप मिलकर उन्हें दूर करने वाले हैं, भगाने वाले हैं अपनी जिंदगी से। तो चलिए देर किस बात की है, शुरुआत करते हैं इट हैपेंस की। रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर और इस अगले ट्रैक के साथ बढ़ते हैं सफर में आगे।

इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्तानी 107.01 पर। दोस्तों आपके साथ हूं मैं सताक्षी, और इसके पहले कि हम सफर में आगे बढ़े, विश करूंगी उनको जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास है। जी हाँ, जिनका आज है हैप्पी बर्थडे, उन सबको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक, और दुआ है मेरी कि आपको वो सब मिले जिसके लिए आप ढेर सारी मेहनत कर रहे हैं और जो जिंदगी में आप पाना चाहते हैं, आपकी हर जायज ख्वाहिश मुकम्मल हो। जिनकी आज है वेडिंग एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह, बहुत बहुत मुबारक। ये दिन यूं ही आपकी जिंदगी में हर साल आता रहे और इसी प्यार के साथ आता रहे। जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास इसलिए है क्योंकि आज उनकी जिंदगी में कुछ खास हुआ है या होने वाला है, या आज के दिन से उन्हें कुछ उम्मीदें हैं, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबको डेडिकेट करूंगी अभी अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्तानी, मेरे साथ सुनते रहिए। इट हैपेंस।

कहते हैं कि कहानी का सच अक्सर किताब का आखिरी पन्ना किताब का आखिरी पन्ना बताता है। कौन कितना मायने रखता है ये अक्सर आखिरी व्यवहार बताता है। और सच आपको हमेशा आखिरी मोड़ पर नजर आता है, वो भी तब जब इंसान को खोने का डर एक इंसान के अंदर से मर जाता है। क्योंकि जब तक एक बंदे को खोने का डर है, तब तक आपको सच सामने होने के बाद भी, या हजार लोग उस सच को आपको दिखाएं उसके बाद भी, वो सच आप देख नहीं पाते, आपको नज़र नहीं आता है। ये आपको तब नज़र आता है जब आप उसको खोने से डरना बंद कर देते हैं, जब आपको ये एहसास नहीं रहता कि अगर कल मेरे साथ नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। उस वक्त एक बंदे को खोने का डर जब निकलता है, तब आप देख पाते हैं कि क्या सही क्या गलत, क्या सच क्या झूठ है। आपने किया है कभी फेस इस जिंदगी के फेस को? हाँ, ये अगर किया है तो आपके नाम ये ट्रैक, अगर नहीं किया है तो जरा अलर्ट रहिएगा लोगों से और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी पर। आपके साथ सताक्षी है।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote, code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर। याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: वेलकम बैक, रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। ये वक्त है गानों की हैट्रिक का। आज गानों की हैट्रिक में तीन बैक टू बैक ट्रैक्स कौन से हैं, आइए सुनकर जानते हैं।

गानों की हैट्रिक आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रजवाणी पर। दोस्तों, मैं सताक्षी आपके साथ हूँ। आज एक बार फिर से हम और आप मिलकर गानों की हैट्रिक में एंजॉय कर रहे हैं कुछ बेहतरीन ट्रैक्स। आज के बैक टू बैक तीन ट्रैक्स कौन से हैं वो गाने जो आज इट हैपेंस में गानों की हैट्रिक का हिस्सा है। सेकेंड ट्रैक अभी आप सुनने जा रहे हैं, जरा सुनिए इसे।

गानों की हैट्रिक आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर। आज के गानों की हैट्रिक का ये लास्ट ट्रैक, इसके बाद इट हैपेंस में हम और आप मिलकर ढेर सारी बातें और ढेर सारे गानों को एंजॉय करेंगे। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रस्थानी।

0: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan
2: aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
3: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers and aap sun rahe hain Radio Briswani.
4: Hi, this is Salman Khan
5: aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
6: Hi, this is Deepika Padukone aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, main hoon Tulsi Kumar aur aap mujhe sun rahe hain Radio Briswani
9: se. To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: जिंदगी में मैंने एक वर्ड सीखा है, आपने भी सीखा है, हम सब ने सीखा है, और वो है कॉम्प्रोमाइज। जिंदगी को सुकून से गुजारने के लिए ना दोस्तों, इस वर्ड की बहुत जरूरत होती है। जिन चीजों को आप बदल ना सके उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। और एक बात और याद रखिएगा कि अपनी किसी भी ख्वाहिश को कभी अपना जुनून मत बनाइएगा, क्योंकि जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें कभी नहीं मिल सकती हैं। चाहे आप बच्चों की तरह रो लीजिए या उन चीजों के पीछे भाग लीजिए, वो आपकी नहीं, वो किसी और की किस्मत में होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे लिए कुछ है ही नहीं। हमारे लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो शायद किसी और की किस्मत में नहीं है। आइए इसी बात पर सुनिए आगे मेरे साथ ही अगला गीत, और कहीं मचाइएगा अपने ब्रेकफास्ट शो को। मेरे साथ सुनते रहिए और एंजॉय करते रहिए, और अपनी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज के साथ सुकून से रहिए।

बहुत सारे फेज जिंदगी में ऐसे आए जब अच्छा टाइम था, बुरा टाइम था, और जिंदगी ने मुझे एक चीज बहुत अच्छे से सिखाई कि अगर आप जरूरत से ज्यादा वक्त किसी को देते हैं, वक्त से ज्यादा वक्त अगर आप किसी को देते हैं, तो वो आपको बेवक्त रुलाता है। देखिए, इज्जत सबको दीजिए, लेकिन अहमियत सिर्फ उनकी करिए जो आपकी कद्र करें। हमेशा किसी भी रिश्ते में उतना ही अवेलेबल रहिए जितना जरूरी है, वरना आपकी वजह से लोग बहुत सेफ फील करेंगे और आप उनकी वजह से अनसेफ फील करेंगे। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिजवाणी सताक्षी के साथ आप हैं और एंजॉय कर रहे हैं इट हैपेंस रेडियो ब्रिजवाणी पर।

0: क्या बात है यार,
1: पहले पहले भावरे जैसे पास पास मंडरा है,
0: बड़ा है।
1: फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टर्का
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: मेरी
1: है
0: तो सुनो।
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए,
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
0: मंडराए,
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
0: तुम
1: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।

0: The 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: अच्छा, जिंदगी के रूल्स बदल के देखना भी कभी कभी आपको जिंदगी से मिलवा देता है. Like, मैंने अपनी जिंदगी के अब सारे रूल्स बदल दिए हैं. देखिए, अगर कोई साथ चले तो ठीक, और अगर कोई साथ छोड़ गया तो उसका फैसला भी ठीक. और इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं. अब मुझे मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से जीना पसंद है, किसी और के हिसाब से नहीं. यू नो, लाइफ के जब ये रूल्स चेंज होते हैं ना, कि हम दूसरों के हिसाब से चलना, उनके हिसाब से जीना, उनके हिसाब से अपनी लाइफ को गुजारना बंद कर देते हैं, तो आपके लिए ये रूल्स बड़े फेवरेबल हो जाते हैं. और दूसरों के लिए हो सकता है कि उनको अच्छा ना लगे, वो परेशान हो, बट उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कब तक आप दूसरों के बारे में सोचेंगे. सोचिए फिलहाल कुछ देर अपने बारे में और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्बेन पर सताक्षी के साथ.